0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के

कल तक उड़ती थी जो मुंह तक आज पैरों में सिमट गई। कल तक उड़ती थी जो मुंह तक आज पैरों में सिमट गई। चंद बूंदे क्या बरसी बरसात की, धूल की फितरत ही बदल गई। जी हां, आवाज दी दुनिया दे तमाम रेडियो दोस्तों नू आदाब नमस्ते सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। जी हां दोस्तों, अज फिर तो हाजिर है जी तुहाडा रेडियो दोस्त आरजे पवन लेके प्रोग्राम सजरी सवेर। बिल्कुल दोस्तों, फिर तो एक नवा दिन, नवे हौसले ते नवियां उम्मीदां। सो जी मैनू उम्मीद है और मैं दुआ भी मंगदा उस रब तों कि अज दा दिन तुहाडे लई ढेर सारियां खुशियां लैके आवे, तुसीं हमेशा खुश रहो ते तंदरुस्त रहो। वैसे दोस्तों कहिंदे ने कि तंदरुस्त रहण लई सब तों जरूरी है तुहाडी सवेर दी सैर। सो जी मैनू इह वी उम्मीद है कि हुण तक तां साडे कई दोस्त सवेर दी सैर दा आनंद लै रहे होणगे और कई मेरे यार दोस्त मित्र इस वक्त सवेर दी बैठी यानी कि चाह दियां चुस्कियां दे नाल नाल आनंद लै रहे होणगे जी आकाशवाणी FM बठिंडा दा। और वैसे साथियों कई मेरे दोस्त इस वक्त यही सोच रहे होणगे कि यार उठिए के ना उठिए। खैर साथियों तुहानूं उठना तां पैणी है क्योंकि तुहाडे उठण नाल ही साथियों तुहाडी जिंदगी दा इह सफर चलना है। खैर दोस्तों, साडी जिंदगी दा इह सफर, साडे दिन दा इह सफर इसे तरह चलदा रहिंदा है। मौसम बदलदे ने, रुत्तां बदलदियां ने, वक्त बदलदा है ते हालात भी बदल जांदे ने। फिलहाल साथियों मौसम दे हुण हालातां ते जिहड़े मिजाज है ओह भी बदले हुए ने और पिछले दिनी होई साथियों बरसात कारण और दिन अंदर हुंदी बदलवाई कारण मौसम च गर्मी थोड़ी घट महसूस हुंदी है। वैसे दोस्तों पिछले दिनी हुई बरसात ने बठिंडा शहर के कुछ इलाकों के हालातों पर भी असर पाया। मेरा मतलब है कि कई इलाकों से परे पानी ने बठिंडा नगर निगम के कामों पर भी एक सवालिया निशान खड़े कर दिते। खैर साथियों सौण का यह महीना है और बारिश का मौसम है और साथियों बारिश का जो मौसम है वह सबनों बहुत वधिया लगता है। और साथियों हुण भी जे आपां देखीए तां आसमान ते अंदर बदलवाई बनी हुई है और जो सानूं इशारा कर रही है कि अज भी साथियों बारिश हो सकती है। सो साथियों मौसम कैसा भी होवे आकाशवाणी FM बठिंडा तुहाडे नाल रहिंदा है। सो जी दिन है अज वीरवार और अज दे इस प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान तुसीं आनंद माणोगे साडा हफ्तावारी सिलसिला शुरू लिया। और साथियों नाल ही गल करांगे थॉट ऑफ द डे यानी कि अज दे किसी खूबसूरत विचार की और 6 अप्रैल के इतिहास के पन्नों पर भी साथियों नज़र मारांगे और नाल ही साथियों तुहाडी चाह दीआं चुस्कियां दे नाल ताज़ा तरीन अखबारी सुर्खियां भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहणगियां। सो जी बने रहो 101.1 MHz अपने रेडियो दोस्त RJ पवन दे नाल। करदे हां जी प्रोग्राम का आगाज़ इस खूबसूरत जिहे गीत दे नाल।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पोल्स थाने तो बोल रहा हूँ।
0: फिर तो
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितों ले आवां?
2: एक लिंक भेज आए, उन्हें प्रोसेसिंग लई
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
0: सर 2 लाख
3: की होया पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हैं।
1: ओए
0: कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो। जे तुसी स्याणप नहीं विखाओगे
0: आप पैसे गवाओगे। RBI कहिंदा है
4: जानकार बनो, सुचेत रहो।

आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तो, मिति 6 अगस्त 2026 दिन वीरवार। आप जी दा दोस्त बलजीत शर्मा ते आप जी दी बहुत ही पसंदीदा रेडियो कंपेयर ते एडिटर गुरदीप कौर गिल जी आप जी दी खिदमत दे विच सरोतियो लेके आ रहे हैं एक विशेष प्रोग्राम पुत्र मिठड़े मेवे। मां दी अरदास ते प्यो दा विश्वास।

सुनना ना भुलना। वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग गुरदीप कौर गिल जी। दोस्तों समा फिर नोट कर लो, दोपहर 12:10 ते दिन वीरवार साडा विशेष प्रोग्राम पुत्र मिठड़े मेवे, मां दी अरदास ते प्यो दा विश्वास। पुत्र

आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे सरोतियो, मिति 7 अगस्त दिन शुक्रवार दोपहर 12:10 ते तुसी सुनोगे विशेष सिलसिला मुश्किल दसो हल दसांगे। इस प्रोग्राम तहत तुहाडी मुलाकात करवाई जावेगी बठिंडा शहर दे मेयर श्री पदमजीत मेहता जी नाल। जेकर किसी भी स्रोते ने अपने इलाके नाल संबंधित कोई मुश्किल या समस्या मेयर साहब नाल सांझी करनी होवे ता ओ प्रोग्राम दे प्रसारण दौरान स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर समा नोट कर लवो, मिति 7 अगस्त दिन शुक्रवार दोपहर 12:10 ते सुनना ना भूलना विशेष सिलसिला मुश्किल दसो हल दसांगे सिर्फ आकाशवाणी बठिंडा ते।

0: तू आ जा, लंघ गया सिद्धा, घर ही रहना, होर किथे जाना।
1: ओहो बबली सिस, मैनू लगा तुसी दिखे नहीं 2 दिनां तो, किते तुसी घूमन ना गए हो।
0: मैं तेनु जयपुर दी महारानी लगदी आ, जेड़ा सवेरे सवेरे मैं घूमन नु निकल जूंगी। बाकी दासियां जेड़ियां ओ घर दे काम करनगियां, मैं सैर करके आऊंगी ते आंदिया नु मेरा सारा काम होया होएगा। कोई मेरा सिर नपदा होएगा, कोई मेरे पैर फड़के बैठी होएगी ते आराम नाल मेरे सामने नाश्ता आ जाएगा। नाश्ता खाएगी महारानी ते फिर मेरा रेस्ट दा टाइम हो जाएगा। फिर रेस्ट तो बाद उठूंगी ते दासियां मेरे वास्ते खाना ले आनगियां, फिर दासियां खाना ले आनगियां।
1: बस बस बस बस बस, तुसी तो लिस्ट बनाई बैठे हो, इन्ना की हो गया? किन्ने लड़ाई होगी भाजी ना? लड़ाई होगी थोड़ी
0: ना? लड़ाई लड़ाई कोई नहीं हुई, पर मैंनू समझ नहीं आंदी कि ए जिहड़ा कहना कि सवेरे सवेरे मैनू लगा तुसी किते घूमन गए होवोगे ना। एक सवेरे सवेरे तड़के तड़के घर दा काम छड्ड के घूमन कौन जांदा है? सैर करन गई कह सकदी सी ता हजम भी हो जांदा।
1: ओहो बबली सिस, बस ओही गल ही हुंदी है, समझ गई सी ना तुसी जान के मेरी इन्नी गल्ल सुनाई।
0: हां ते तू कदे सुनिया कि किसे नु क्या होवे तू कि तुसी शिमला गए सी सैर करन गए सी? घूमन जाना हुंदा है जिवें शिमला गए, कुल्लू मनाली गए, या फिर आजो अज आपां फ्री आ संडे आ ते चलो रोज गार्डन घूम आईये। सवेरे सैर करना हुंदा है मॉर्निंग वॉक की असीं सैर करन गए। हुण सैर करना ते घूमन जाना दोनों विच फर्क हुंदा है।
1: ओहो होगा छोड़े लिए फर्क, मैं तो घूमन ही जाने हुने सवेरे सवेरे। एडा ना लड़ो तुसी मेरे नाल, बीबो सिस की गए तू सब बीबो सिस दी कमी पूरी करन लग गए।
0: लड़ना तो होया, कल शाम मेनू ये कहंदे आ जा तेनू घुमा लियाना, इना महंगा सूट पाके तैयार श्यार होके जदों मैं बाहर आई मैं क्या हां जी चलो पर जाना किथे है? कहंदे सब्जी मंडी जाना, नाले सब्जी ले आवांगे नाले घूम आवांगे। पहला मैं अपना सूट वेख्या, फिर इन्हां नू देख्या, फिर सूट वेख्या, फिर इन्हां नू देख्या।
1: है दो दो वारी एक बार सब दिखदा नहीं?
0: दे सदा मैनूं पहली वारी च गया सी, पर ओ देखना कि ए जिहड़ा मैं सूट पाके सोचिया सी घूमन चली आ सब्जी मंडी पाके जावा के ना जावा।
1: ओहो कोई गल नहीं, गुस्से ना करो बबली सिस, ऐडा नहीं हुंदा, हो जांदा थोड़ा हो जांदा निक्की निक्की गल्लां, आ साडे घरे वी रोज हो जांदा।
0: हां हां जदो कोई जख्मी पहला तो बैठा होवे उत्तो आगे कोई फड़े बुक लून दी ते भुक दे उंदे जख्मा ते फेर अगले नु चुभनियां नी गल्लां।
1: मैं समझ गई, कल दा गुस्सा जिहड़ा तुसी सब्जी मंडी जाए वधिया सूट दा हुण मेरे ते कड्डन लगे हो भाजी ते
0: मेनू लगदा कि तू गेट अगे खड़ी होके आही काम करदी है। केड़ी घूमन गई, केड़ी आ गई, केड़ी 30 मिंट लाके आई, किन्ने 35 मिंट लाए, केड़ी सूट पाके गई सी, केड़ी जीन पाके गई सी, केड़ी हसदी हसदी गई सी ते केड़ी रोस के घर आले नाल आई है। ना मेनू एक गल दस बीबो, 1 महीना हो गया है पेके गई नू, अब बीबो दी कमी महल्ले दे विच सारी तू ही पूरी करनी है?
1: ओहो बबली सिस गुस्सा ना करो, मेरा नॉर्मली गल कीते तुस तो बात दा बतंगड़ी बनाता।
0: मैं बतंगड़ कोई नहीं बनाया।
1: अब तुसी जब बैंगन दा पट्ठा ही बनाता।
0: नी गल सुन, जे बैंगन दा पट्ठा बन गया ना एक कौली इधर मेरे भी पा जा, मैं आज दोपहर दी सब्जी नहीं बनाई। नाले मेनू लगदा है कि महल्ले दे विच ना वाईफाई दी तां लोड़ है ही नहीं, सारी कसर ही तू पूरी करी जानी है।
1: है थानू किदा पता कि मैं वाईफाई ले आई हां थोड़े घरे?
0: है तू वाईफाई ले आई है? मैं तां वैसे ही क्या पहला बीबो वाईफाई दा काम करदी सी, आ हुण अजकल तू कसर पूरी करी जानी है।
1: ओहो एडा ना करो, सवेरे सवेरे मेरे हबी मेरे नाल लड़ पे, हुण तुसी लड़न लग गए। डॉली जावे तां किधर जावे?
0: इस तरह करे डॉली फिल्म वेखन जावे, नाले बीबो तो छुटकारा नाले बबली तो छुटकारा।
1: चलो छड्डो ये गल्लां, तुसे मैनूं सुनानी लग गए, नहीं देना नेट ना दो, मेरी हाबी दी गल सुन लो।
0: नेट तो वाईफाई तो तेरी लड़ाई का दे तो होगी घर वाले नाल?
1: मैं अपनी हाबी नूं कहा, देखो हाबी जी मेरा नेट स्लो चल रहा है, थोड़ा जा हॉटस्पॉट ही छड्डो।
0: फिर की कहंदे?
1: फिर की कहंदे? फिर की हो गया, नेट खत्म हो गया था, जुबान नाल कनेक्ट कर ले, ए तां बहुत तेज चलदी है।
0: ना मेरी गल सुन, आ जवाब ता सिरा सी, मैं कहनी आ खुश करता, आ सवेर दी गुस्से च बैठी हुई सी, मजा आ गया सुन के।
1: तुसी केड़ा काटो मेरे हबी नालो, तुसी सेलियां कर रही हो, तुसन जले ते नमक छिड़क दे हो।
0: अच्छा आ मेरी बिल्ली मेनू ही मैं आऊं, पहला मैं ही मुहावरा।

0: घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
5: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
4: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉक्टर सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
6: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
7: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
4: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के

0: ये किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40-40 हजार रूपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिस्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 1,40,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए

0: ने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
1: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता।
2: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रीय हित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दिया खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विच रचनात्मक प्रतिभा दा बेमिसाल भंडार है, जिसकी वरतों देश नूं आलमी समग्री सिरजन केंद्र बनाउण लई कीती जा रही है। सरकार ने कैबिनेट सकत्तर डॉक्टर टीवी सोमनाथन ते गृह सकत्तर गोविंद मोहन दा कार्यकाल 1 साल लई वधाया। भारत दे 60 व्यापारक जहाजा ने हॉर्मुस पांजोड़ सुरक्षित ढंग नाल पार कीता। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते उत्तराखंड समेत कई जिलों विच भारी बारिश होने की पेशीनगोई की। उत्तराखंड विच मीह पैण की चेतावनी के मद्देनजर सारे संबंधित विभाग हाई अलर्ट ते मर्दा

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। गुलाम फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वरों में समीर का लिखा गीत है।

श्रोताओं, आज सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा आज के मेहमान लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का भाग एक। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। और स्पेशल 26 इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं अमन त्रिखा, श्रेया घोषाल और शबाब सबरी की आवाजें हैं। इरशाद कामिल के बोल, MM करीम का संगीत।

जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

शिल्पा राव और सचेत टंडन की आवाजों में अगला गीत। प्रिया सरैया ने इस गीत को लिखा है, धुन बनाई है सचिन जिगर ने। फिल्म का नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं प्रेम की दीवानी हूँ इस फिल्म का गीत। चित्रा और केके की आवाजें हैं, गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार अनु मलिक।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह? तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
5: अगला गीत बेफिक्रे फिल्म से सुना रहे हैं आपको, अरिजीत सिंह की आवाज में, जयदीप साहनी का लिखा गीत है, तर्ज बनाई है विशाल एंड शेखर ने।

कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत दे दे प्यार दे इस फिल्म से अरमान मलिक की आवाज है। कुणाल वर्मा ने इस गीत को लिखा है, अमाल मलिक ने संगीत से सजा

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ लेती हूं विदा। मैं पूजा नारानिया, नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज की फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे संगीतकार को जो अपने कॉलेज के जमाने में अच्छे क्रिकेटर रहे थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जाने की बजाय वो आ गए फिल्मी दुनिया के मैदान में और बन गए संगीतकार और निर्देशक। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने संगीतकार, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर विशाल भारद्वाज पर।

0: है जी।
1: विशाल भारद्वाज का जन्म हुआ था बिजनौर उत्तर प्रदेश में। उनके पिता राम भारद्वाज एक जाने माने कवि और गीतकार थे। विशाल की शिक्षा दीक्षा हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। अपनी जवानी के दिनों में विशाल भारद्वाज कुछ गुमनाम गजल गायकों के लिए हारमोनियम बजाया करते थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स में उन्होंने अपने प्रोग्राम किए। आगे चलकर आरवी पंडित से उनकी जान पहचान हुई और इस तरह से विशाल भारद्वाज एक म्यूजिक कंपनी में आ गए। एक दोस्त ने विशाल भारद्वाज का परिचय जाने माने गीतकार और निर्देशक गुलजार से करवाया।

उसके बाद विशाल ने जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड और गुच्छे जैसे कई सीरियल्स में गुलजार के लिखे गानों को स्वरबद्ध किया। जंगल बुक का टाइटल गीत तो आपको याद ही होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद जब गुलजार बना रहे थे फिल्म माचिस, तो बतौर संगीतकार उन्होंने विशाल भारद्वाज को साइन किया। फिल्म माचिस का संगीत एकदम अलग तरह का था, ये एक ताजगी भरा संगीत था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे ये गाना।

इन सभी गानों को सुनकर लगता नहीं है कि किसी नवोदित संगीतकार की रचनाएं हैं ये, और फिर गुलजार के गानों को स्वरबद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। ये बात तो जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन पहले ही कह चुके थे। जाहिर है कि विशाल भारद्वाज ने कई चुनौतियों के बीच काम करके अपने आप को साबित किया। विशाल भारद्वाज की दूसरी बड़ी फिल्म थी सत्य।

ने कमल हासन की फिल्म चाची 420 में भी संगीत दिया और कई अलग अलग फिल्में उनकी आईं। लेकिन जिस फिल्म का संगीत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और सुना गया वो थी एक बार फिर गुलजार की फिल्म हू तू तू। इस फिल्म का छई छप छई गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था।

इसके बाद विशाल भारद्वाज ने सोचा कि वो संगीत की दुनिया से फिल्म निर्माण की दुनिया में आ जाएंगे और फिर उन्होंने साल 2002 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मकड़ी। शबन आजमी के अभिनय वाली इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण और इसके अलावा संगीत, ये सारी जिम्मेदारियां खुद विशाल भारद्वाज ने संभाली थी। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया में बाकायदा चले आए और उनकी निर्देशित पहली बड़ी फिल्म कहलाई मकबूल। मकबूल के बाद विशाल भारद्वाज ने एक और फिल्म का निर्माण किया। ये बच्चों की फिल्म थी और रस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित थी। ये फिल्म थी द ब्लू अम्ब्रेला। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने एक धमाकेदार फिल्म बनाई। ये फिल्म थी ओंकारा।

इस दौरान विशाल भारद्वाज का संगीत देने का काम लगातार जारी रहा और उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में आईं, जैसे लव के लिए कुछ भी करेगा।

विशाल भारद्वाज के बारे में आगे बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में पढ़ाई के दिनों में विशाल भारद्वाज की मित्र बनी रेखा, जो अब उनकी पत्नी और फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी गायिका हैं। रेखा भारद्वाज की आवाज में सुनिए ओमकारा फिल्म का।

विशाल भारद्वाज की फिल्में बड़ी अनूठी हुआ करती हैं। वो फिल्मी दुनिया के सामान्य चलन से अलग हटकर अपनी फिल्में पेश करते हैं। जैसे फिल्म कमीने एक अलग तरह की कहानी थी और इसका संगीत भी अपने आप में बिल्कुल अलग था।

आपको बताएं कि विशाल एक अच्छे गायक भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विशाल कितनी बहुमुखी प्रतिभा है। एक तरफ संगीत देते हैं, दूसरी तरफ कथा पटकथा संवाद लिखते हैं, निर्माण निर्देशन भी करते हैं और गायक भी हैं। जी हाँ, फिल्म यू मी और हम का ये गाना सुनिए।

अमिताभ बच्चन के अभिनय वाली फिल्म निशब्द की कहानी विशाल भारद्वाज ने तैयार किए थे। फिल्म हाले दिल का ये शीर्षक गीत सुनिए, कमाल का गाना है ये और विशाल भारद्वाज की प्रतिभा को अच्छी तरह से दर्शाता है।

अब विशाल भारद्वाज निर्माता भी बन चुके हैं और अपनी कंपनी के जरिए नई प्रतिभाओं को उतार रहे हैं। जैसे कि विशाल भारद्वाज ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म बनाई है इश्किया। फिल्म इश्किया के गाने भी गुलजार ने ही लिखे हैं और इनका संगीत खुद विशाल ने तैयार किया। जरा इब्ने बतूता सुनिए।

विशाल भारद्वाज अपनी खास तरह के सिनेमा के लिए और अपने खास तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं। साल 2011 में वो लेकर आए फिल्म सात खून माफ।

साल 2013 की शुरुआत विशाल भारद्वाज ने की अपनी एक दिलचस्प फिल्म के जरिए, जिसका नाम था मटरू की बिजली का मंडोला। इस फिल्म का ये दिलचस्प गाना सुनिए, विशाल भारद्वाज की जीवन संगिनी रेखा भारद्वाज ने।

विशाल भारद्वाज लेकर आए एक बड़ी ही चर्चित फिल्म जिसका नाम है एक थी डायन। विशाल भारद्वाज अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी गिनती हिंदी फिल्म उद्योग के संवेदनशील निर्देशकों में होती है। साल 2014 में विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर की कृति हेमलेट पर बनाई अपनी फिल्म हैदर 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।

विशाल भारद्वाज की एक और फिल्म आई डेढ़ इश्किया, जो इश्किया का सीक्वल है। आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्मों के निर्देशक अभिषेक चौबे, निर्माता विशाल भारद्वाज, संगीत भी विशाल का ही।

विशाल भारद्वाज एक संगीतकार होने के साथ साथ एक निर्माता, निर्देशक और लेखक भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने फिल्म तलवार का निर्माण भी किया और इसकी कहानी भी तैयार की। आपको बता दें, फिल्म तलवार का निर्देशन जाने माने शायर, निर्माता, निर्देशक और लेखक गुलजार की बेटी मेघना गुलजार ने किया था और फिल्म तलवार ने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार हासिल किए थे। पिछले दिनों आई निशिकांत कामत की फिल्म दृश्यम में विशाल भारद्वाज ने संगीत दिया था। इसके अलावा फिल्म जुगनी में विशाल भारद्वाज ने ये गीत गाया था।

0: विशाल भारद्वाज बहुत ज्यादा फिल्मों में संगीत नहीं देते। आजकल वो उन फिल्मों का संगीत निर्देशन कर रहे हैं जिन्हें या तो उन्होंने प्रोड्यूस किया है या फिर उनका निर्देशन उन्होंने किया है। लेकिन पिछले दिनों एक फिल्म में उन्होंने कुछ गाने बनाए। ये फिल्म थी मदारी, विशाल भारद्वाज प्रोडक्शंस की एक महत्वपूर्ण फिल्म पिछले दिनों आई और वो फिल्म थी रंगून।
1: टपके टपके रे हंस

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक, लेखक और संगीतकार विशाल भारद्वाज पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

जी हाँ साथियों, तुसी इस वक्त आनंद मार रहे प्रोग्राम गीत पिटारा था। प्रोग्राम दे विच प्रोग्राम दा पहला गीत तुसी जिहड़ा इंजॉय किया वह सी आसा सिंह मस्ताना होरां दी आवाज़ दे विच, जिसनों जिहड़ा अपनी कलम नाल सजाया सी हरचरण सिंह परवाना होरां ने। सो सुनदे हां साथियों प्रोग्राम दा अगला गीत, जिसनों आवाज़ दित्ती है गुलशन कोमल ने।

आवाज़ दी दुनिया दे प्यारे दोस्तो, मिति 6 अगस्त 2026 दिन वीरवार। आप जी दा दोस्त बलजीत शर्मा ते आप जी दी बहुत ही पसंदीदा रेडियो कंपेयर ते एडिटर गुरदीप कौर गिल जी आप जी दी खिदमत दे विच सरोतियो लेके आ रहे हैं एक विशेष प्रोग्राम पुत्र मिठड़े मेवे, मां दी अरदास ते प्यो दा विश्वास।

सुनना ना भुलना। वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग गुरदीप कौर गिल जी। दोस्तों समा फिर नोट कर लो, दोपहर 12:10 ते दिन वीरवार साडा विशेष प्रोग्राम पुत्र मिठड़े मेवे, मां दी अरदास ते प्यो दा विश्वास।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
0: फिर तो
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितने लेवा?
2: एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लई
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
0: सर 2 लाख
3: की हो या पापा?
0: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल चो ड्रग्स मिले हन। कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उना नु कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नु रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
0: तां पैसे गवाओगे। RBI कहिंदा है
4: जानकार बनो, सुचेत रहो।
5: आकाशवाणी FM बठिंडा 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से इस वेले चल रहे प्रोग्राम गीत पिटारा।
6: जी हाँ साथियों, समा 10:15 ते 50 सेकंड जी आकाशवाणी FM बठिंडा यानी कि 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से चल रहे साथियों प्रोग्राम गीत पिटारा। ਸਤਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮਿਤੀ 9 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ

आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे सरोतियो मिति 7 अगस्त दिन शुक्रवार दोपहर 12:10 ते तुसी सुनोगे विशेष सिलसिला मुश्किल

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾ ਹਰਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਜੀ 10:59 ਤੇ 47 ਸਕਿੰਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਔਰ 11:05 ਤੇ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਐਫ ਐਮ ਰੇਨਬੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣਾਂ ਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ।
1: नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर कंटेंट क्रिएशन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथ और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चल रही पहलों की समीक्षा की गई। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। हड़ताली डॉक्टर होम्योपैथ को 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित

विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए जाने की आज बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 1,40,000 लोग मारे गए थे। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज़ जल डमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ समझौता मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह इस समझौते को मसौदा दिया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया है और जूनियर पुरुष हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम शुरू हो चुका है बॉलीवुड रील्स, और बॉलीवुड रील्स में मैं हूं बबीता रावत। आज आपके साथ बहुत सारी बातें हैं बॉलीवुड जगत की और बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोगों की, और साथ ही साथ बॉलीवुड सरताज का क्विज भी होगा आपके लिए। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारी बातों में छुपा हुआ है बॉलीवुड सरताज के क्विज का राज, यहाँ आंसर। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर। बॉलीवुड रील्स बबीता रावत के साथ चल रहा है, जुड़े रहिए, एंजॉय कीजिए।

0: होता नहीं
1: हाँ जी, बहुत
0: प्यार।
1: ध्यान से सुनिएगा, बॉलीवुड ट्रेल चल रहा है। मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ, और बॉलीवुड की बातें हो रही हैं यहाँ पे। और बॉलीवुड की बातें शुरू करने से पहले हम बता दें कि आज बॉलीवुड में किनका है जन्मदिन। जिन यहाँ जानने हैं आप भी कि कौन मना रहा है आज अपना बर्थडे। आज है 6 अगस्त और आज है आदित्य नारायण का बर्थडे। आदित्य नारायण को कौन नहीं जानता, उदित नारायण के पापा और दीपा नारायण इनकी मम्मी, दोनों ही सिंगर हैं। और इन दोनों की खूबी इनके अंदर आई है, और इसके अलावा भी बहुत सारी खूबियां इनके अंदर है। जी हाँ, सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग भी इन्होंने बहुत की है, और बचपन से ही गाने का शौक रखने वाले बाल कलाकार के रूप में सिंगिंग और एक्टिंग करने वाले आदित्य नारायण। और होस्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं ये। शापित फिल्म से 2010 में इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था, और एक बहुत फेमस गाना है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इनकी आवाज में, और जबरदस्त है। थिरकिए और नाचिए और गाइए आदित्य नारायण को हैप्पी बर्थडे बोलिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: एनसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
6: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ बॉलीवुड की बातें लेकर के। वैसे बॉलीवुड में नए नए ट्रेंड्स चलते रहते हैं और इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो है सुपर नेचुरल पावर वाली मूवीज का। जी हाँ, सुपर नेचुरल वाली जो मूवीज होती है हॉरर तड़के के साथ साथ कॉमेडी भी बटोर कर लेकर आती है, यानी कि डराने के साथ साथ दर्शकों को हंसाती भी है, और ऐसे में हमें बड़ा इंतजार रहता है ऐसी एंटरटेनिंग मूवीज का। और कई समय से कुछ एक अलग तरह की मूवी बनने को तैयार हो रही है। नाग जिला के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। जी हाँ, इच्छाधारी नाग, जिसमें कार्तिक आर्यन डेब्यू कर रहे हैं। जी हाँ, कार्तिक आर्यन की बात की जाए तो इसी तरीके की एक फिल्म और बनने वाली है, और कौन होंगे उसमें, कौन है और कैसे बन रही है सब बताएंगे। पहले आप इस गाने से मिलिए और फिर बताते हैं आपको अगली फिल्म नागिन किसके ऊपर बन रही है।

गिली गिली हा। और ऐसे ही करते हुए इच्छाधारी नाग या नागिन प्रकट हो जाते हैं ना, ऐसे ही होता ना कुछ। और इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, नाग नागिन इच्छाधारी अब पहले पर्दे पर आपको दिखाई देने वाले हैं। फर्स्ट कार्तिक आर्यन नागजिला लेकर आ रहे हैं और एक ऐसी फिल्म लेकर आ रही हैं हमारी गिली गिली या मिलेगी मिलेगी स्त्री वाली। जी हाँ, श्रद्धा कपूर ये फिल्म लेकर आने वाली हैं, जो कि बनने वाली है इच्छाधारी नागिन। और हालांकि इस फिल्म को बनाने की जो योजना थी वो 6 सालों से चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन की वजह से लोगों को ये लगा, मतलब सभी को ये लगा कि ये फिल्म अब नहीं बनेगी। लेकिन कई अटकलों के बाद अब ये उम्मीद जागी है और निर्माता निखिल द्विवेदी ने कहा है कि ये फिल्म अब हम इस फिल्म पर काम करने वाले हैं। और श्रद्धा कपूर भी काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि अब इस रोल में वो दिखाई देंगी इच्छाधारी नागिन के रूप में। हॉरर कॉमेडी स्त्री में अपना धमाल कमाल मचा चुकी श्रद्धा, अब देखते हैं कब इच्छाधारी नागिन बनेगी। लेकिन इससे पहले उनकी एक ईथा फिल्म आ रही है जो सिनेमाघरों में जल्दी रिलीज होगी, और ये एक महाराष्ट्र की मशहूर लोक कलाकार नृत्यांगना विठाबाई भाऊ मांग नारायण गावकर का किरदार इसमें नजर आएंगी इस किरदार में। और फिलहाल जब भी वक्त होगा ये आने वाली जो फिल्म है इनकी नागिन कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स, और क्योंकि यहाँ पर आपको हर लेटेस्ट बात पता चलती है बॉलीवुड की। तो अभी तो झूठी मैं मक्कार का ये गाना।

वैसे हमारे व्यूवर्स जो हैं अपने प्यारे स्टार्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार लुटाते हैं, और उनकी फिल्में जब भी रिलीज होती हैं तो उनके जितने भी दर्शक हैं वो सिनेमा हॉल की तरफ जाते हैं। खास तौर से कुछ कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर डेज में अपनी फिल्मों को रिलीज करते हैं, खास तौर से त्योहारों के मौके पर। फेस्टिवल सीजन में जहाँ बाजारों में रौनकें होती हैं, वहीं पर सिनेमा हॉल्स में भी बहुत जबरदस्त रौनक होती है, क्योंकि कोई ना कोई बड़े स्टार की फिल्म जरूर रिलीज होती है। और ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म ना रिलीज हो, ऐसा कभी हो सकता है? क्योंकि सलमान खान ज्यादातर अपनी फिल्मों को ईद के मौके पर या दिवाली के मौके पर रिलीज करते हैं, और अब सुनने में आ रहा है कि उनका कोलैबोरेशन वामशी पेडीपल्ली से हुआ है। जी हाँ, वामसी पेडीपल्ली साउथ के एक अच्छे खासे डायरेक्टर हैं, और अब सुपरस्टार सलमान खान के साथ एक फिल्म बनाने वाले हैं। जी हाँ, शूटिंग आज से शुरू होने वाली है, और उनके साथ ऑपोजिट में नयनतारा होंगी। नयनतारा, जी हाँ, फिल्म का नाम वैसे तो टेम्परेरी तौर पर SVC 63 रखा गया है, लेकिन अभी जब रिवीलिंग होगा नाम तो हम जरूर आपको बताएंगे। इस फिल्म में सलमान खान, नयनतारा के अलावा राहुल देव भी आपको दिखाई देंगे, और खलनायक के तौर पर दिखाई देंगे। एक्शन फिल्म है, निर्माता इसमें दिलराजू हैं, और जल्द ही ये फिल्म कब रिलीज होगी बताते हैं आपको। ईद के मौके पर 2027 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है, ऐसा अनुमान है। अभी फिलहाल इस फिल्म का शेड्यूल शुरू हो गया है 6 हफ्तों का शूटिंग का, और जल्द ही ये फिल्म की कुछ और अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। बॉलीवुड ट्रेल सुनते रहिए हमारे साथ।

0: दीप मनी और नेहा भसीन की आवाज में सुन रहे थे आप रेस थ्री से ये गाना। और भाई तबाह बर्बाद हो जाते हैं हम जब आपकी आवाज सुनते हैं। और ऐसे में क्या है अब राज, क्या भाई आपको बता दें कि इस वक्त तो राज यही है कि हमारे पास है बॉलीवुड सरताज के क्विज का राज। जी हाँ, बॉलीवुड सरताज का क्विज हम आपसे पूछने वाले हैं। और बातें हमारी बहुत सी हो गई हैं, आपने बिल्कुल ध्यान से सुना होगा। और इसमें ही हम आपको बताने वाले हैं कि आज का बॉलीवुड सरताज का क्विज क्या है। चलिए सुनिए बहुत ध्यान से और जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। बॉलीवुड सरताज का आज का जो क्विज है उसमें हम बहुत आसान सा सवाल पूछा है। आदित्य नारायण की बात करी है हमने, सिंगर के तौर पे आप उन्हें जानते हैं और एज अ होस्ट के तौर पर जानते हैं आप उन्हें, लेकिन उन्होंने एक फिल्म भी करी है जिसमें उन्होंने डेब्यू किया था। उस फिल्म का नाम हमें लिख कर भेज दीजिए 9868107070 पर। जी हाँ, आदित्य नारायण की डेब्यू फिल्म का नाम हमें लिख कर भेज दीजिए 9868107070। व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ भेजिए और कोई एक लकी होगा जो हमारा आज का बॉलीवुड सरताज बनेगा। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और मैं हूं बबिता रावत। आपके साथ प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड ट्रेल्स में बहुत सारी बातें हो रही हैं आपके साथ, बॉलीवुड जगत की और बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोगों की।

कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी अगर हम झलक देखते हैं या जिनको हम देखते हैं तो वो रूह तक उतर जाती हैं। कुछ ऐसी ही फिल्में होती हैं। क्यों? संजय लीला भंसाली जी कुछ ऐसी ही फिल्में बनाते हैं और जिनका जो सेट है वो इतना भव्य होता है कि बस हमारे इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं वो जो छाप है वो बस जाती है और बस हमारे दिमाग में उनकी जो फिल्में हैं वो छा जाती हैं। देवदास भी उन्हीं में से एक मूवी थी और आज भी कल्ट मूवीज में से एक मानी जाती है ये फिल्म। और जब देवदास की बात की जाती है तो इस फिल्म में पारो का कैरेक्टर निभाने वाली ऐश्वर्या राय थी और ऐश्वर्या राय का जबरदस्त यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी उनकी। लेकिन आपको पता है कि ऐश्वर्या राय के अलावा यानी कि ऐश्वर्या राय से पहले किसी और को भी इस रोल के लिए साइन कर लिया गया था? जी हाँ, करीना कपूर को इस फिल्म में पारो के कैरेक्टर के लिए साइन कर लिया गया था। उनकी स्क्रीनिंग हो चुकी थी लेकिन एंड टाइम पे पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से संजय लीला भंसाली जी का मन बदल गया और उन्होंने पारो के रोल को ऐश्वर्या को दे दिया। और करीना कपूर का नाम जहाँ इस फिल्म के लिए बहुत चर्चाओं में था, अचानक से उनका नाम इस फिल्म से हट गया। कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय

तक संजय लीला भंसाली ने करीना कपूर के साथ काम नहीं किया, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये जो बीच की दूरियां थी वो कम हो गई हैं। जी हाँ, 24 साल की बाद अब संजय लीला भंसाली करीना कपूर के साथ एक फिल्म करने वाले हैं, और ये फिल्म एक माइथोलॉजिकल फिल्म होगी। इसमें एज अ एक्टर धनुष भी दिखाई दे सकते हैं। अब देखे ना, दोनों का रोल जबरदस्त होने वाला है, और क्या होगी इस फिल्म की स्टोरी आगे भी पता चलता रहेगा। सुनते रहिए बॉलीवुड रील्स, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ अभी सांवरिया फिल्म से ये गाना।

बॉलीवुड ट्रेल सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ, और बॉलीवुड की बहुत सारी बातें आपके लिए। वैसे कई ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी खोज एक बार निकली, यानी कि जैसे आपने देखा सांवरिया फिल्म ने हालांकि बहुत ज्यादा तरक्की नहीं करी, लेकिन रणबीर कपूर का जो करियर था इसी फिल्म से चमकना शुरू हुआ। ऐसे ही बहुत सारे हमारे डायरेक्टर या फिर कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स होते हैं जो एक्टर या एक्ट्रेसेस को लाते हैं और उसके बाद उनकी किस्मत चमकना शुरू होती है। ऐसी ही एक खोज अनुराग कश्यप की भी है। जी हाँ, अनुराग कश्यप ने भी एक ऐसा ही हीरा खोजा है और जिसने अब धीरे धीरे करके फिल्म इंडस्ट्री में अपना परवान चढ़ाना शुरू किया है। अनुराग कश्यप को कौन नहीं जानता, ब्लैक फ्राइडे, देवडी, गुलाल, गैंग्स ऑफ वसेपुर, अगली और रमन राघव जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, सत्या क्वीन जैसी फिल्म को प्रोड्यूस कर चुके हैं और एक्टिंग का कमाल धमाल भी बहुत सी फिल्मों में दिखा चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कई लोगों को लॉन्च भी किया है। चलिए मैं बताऊंगी आपको, लेकिन अभी अकीरा फिल्म से ये गाना सुनिए और इंजॉय कीजिए।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
7: वो सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स। और बॉलीवुड में जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग आते हैं और उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उनकी किस्मत चमकने लगती है। ऐसे ही भाई सैयारा स्टारर आप आहान पांडे को तो जानते ही हैं, और आहान पांडे के साथ अब यश राज बैनर भी जुड़ चुके हैं और उनकी अगली फिल्म में शर्वरी बाग के साथ अपोजिट काम कर रहे हैं। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि बॉबी देओल इस फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे हैं। भाई ये भी खबर नहीं है, खबर यह है कि बॉबी देओल के किरदार के साथ साथ एक और किरदार है जो इस फिल्म में एक अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं, और वो हैं ऐश्वर्या ठाकरे, जो कि बॉबी देओल के बेटे के रूप में आपको नजर आने वाले हैं। देखिए, बॉबी देओल इसमें विलन और उनके बेटे ऐश्वर्या ठाकरे बनेंगे, वो भी विलन के अवतार में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपके लिए यही एक्साइटेड न्यूज थी कि अब जल्द ही आपको बॉबी देओल के साथ ऐश्वर्या ठाकरे दिखाई देंगे। और ऐश्वर्या ठाकरे अनुराग कश्यप की खोज है, निशांची फिल्म से उन्होंने शुरुआत की थी और ओटीटी प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपनी शुरुआत की, और अब दिखेंगे वो बॉबी देओल और आहान पांडे और शर्वरी वाघ के साथ एक नई फिल्म में। अभी एनिमल का ये गाना और उसके बाद अनाउंस करेंगे हम आज के बॉलीवुड सरताज का नाम।

वैसे बहुत बेखबर हो गए हैं हमारे आज के बॉलीवुड ट्रेल्स के बॉलीवुड सरताज, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करी फोन मिलाने की, लेकिन उनका फोन तो भाई उठाया ही नहीं। शिव मेरठ से उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, शापित थी फिल्म किसकी, जी हाँ आदित्य नारायण की फर्स्ट डेब्यू एक्टिंग मूवी। और ये बिल्कुल करेक्ट जवाब था, बहुत सारे लोगों ने हमें बिल्कुल करेक्ट करेक्ट जवाब दिया। और कौन है वो, चलिए हम बताते हैं आपको, जैनन त्यागी।

जी, मोदीनगर से इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और प्रदेश सलीम सलीम ने दिया है, लेकिन इन्होंने गलत जवाब दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर और किसका जवाब सही आया है? कंचन सोनिया बिहार से बिल्कुल सही जवाब देती हैं। और इसके अलावा बताते चलते हैं आपको, बलराम गेट चौराहा कासगंज से अनूप साहू जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और यहाँ से धर्मशाला से भी सही जवाब आया है ईशा का। और इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा है निकिता पारेकर जी का जवाब, जब प्यार किसी से होता है, बिल्कुल गलत जवाब। और हाँ, अमरावती महाराष्ट्र से पंकज जी का बिल्कुल सही जवाब आता है। इसके अलावा हरीश गौर मेरठ से बिल्कुल सही सही जवाब देते हैं। और राजकुमार संतानी जी बिल्कुल सही जवाब देते हैं महाराष्ट्र से। और इसके अलावा और कौन है जिन्होंने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है? रोहतक से धर्म भाटिया जी, आपका जवाब गलत है। जी हाँ। और इसके अलावा कौन है भाई? बहुत सारे जवाब यहाँ पर आज गलत आए हैं, यानी कि आप बहुत कंफ्यूज हो गए आज हमारे बॉलीवुड सरताज का क्विज। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाजत, मेरे जाने का वक्त हो चला है। और आपके लिए फिलहाल अब आऊंगी मैं मेरा वाला सॉन्ग में। अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा न्यूज ब्रेक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होना निर्धारित है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग

0: ट्यूब शुरू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग-अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। भारत में श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने सुषमा स्वराज को सौम्यता और सादगी की मिसाल बताया। श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the Lok Sabha paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Lok Sabha Speaker Om Birla stated that today marks 81 years of the tragic atomic bombings in Japan.
2: 81 years ago, in Hiroshima and Nagasaki cities of Japan, on 6th and 9th August 1945, atomic bombs were dropped. In this terrible tragedy, lakhs of innocent people lost their lives and innumerable people were seriously injured. This house reaffirms its commitment to freeing the world from weapons of mass destruction.
1: The House also observed silence in memory of the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah on alleged police action during students' protests. The Speaker said question hour is an important part of the proceedings which provides every member an opportunity to raise issues. Mr. Birla added that Parliament is meant for discussion, for raising questions and for meaningful exchange of ideas. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. Earlier, the Rajya Sabha was adjourned till 12 noon following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the ministers laid papers on the table of the House. The reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce, Industries and Chemicals and Fertilizers were tabled in the House. After that, Chairman C.P. Radhakrishnan took up 0 hour amid opposition uproar. Some of the members raised issues of urgent importance. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said every member

0: दिवाली मना रहे मेरे शेर पुत।
1: हाँ जी मम्मी, मैं इतने अजिंदर आ वेखी
2: बच्चा हथ च बंब ना चला ले।
1: मम्मी इतने रौला बहुत पैंड है, मैं तुम्हें बाद चो कॉल करा।
0: हाँ ठीक है पुत।

बाप दी पग नू हमेशा उच्चा रखे, महफूज रखे। एक बजुर्ग मां हस्पताल विच दाखल सी। उस दे तीन पुत सन, दो बहुत अमीर सन, एक सधारण नौकरी करदा सी। जदों डॉक्टर ने पुछिया, मां जी तुहाडे नाल सब तो वध कौन रहिंदा है, तां मां ने मुस्कुरा के कहा, जिस कोल सब तो घट पैसे ने उस कोल मेरे लिए सब तो वध समां है। ये कहानी दोस्तों सानू दसदी है कि मापिया नू दौलत नालों वध अपने बच्चों का साथ चाहिदा है। पुत ओ नी जो उच्चे मैल बना देवे, पुत ओ जो टुटदे दिलां नू जोड़ देवे, पुत ओ नी जो सिर्फ अपना सोचे, पुत ओ है जो हर दुखी दे हंजू पूंजे, पुत ओ नहीं जो नाम कमावे, पुत ओ है जो मापिया दा मान वधावे, पुत ओ नहीं जो दूर चला जावे, पुत ओ है जो दिलां विच वस जावे। मां दी दुआ जिस दे नाल होवे, पिता दी मेहनत जिस दी ढाल होवे, ओही सच्चा पुत है, ओही सच्चा पुत है, ओही पंजाब दी ते अपने मापिया दी असल शान है। सरोतियो, घड़ी दियां सुइयां इजाजत नहीं दे रहियां। आओ असी सारे मिलके अजिहा समाज बनाईए जिथे हर बच्चा चंगे संस्कारां नाल वड्डा होवे, हर मां प्यो सत्कार नाल जीवे, अते पंजाबी साहित अते सभ्याचार दी ए अनमोल विरासत अगलियां पीढ़ियां तक पहुंचदी रहे। तोड़े प्यार साथ अते सर्वन ले दिलों धन्नवाद करदे आं आप जी दे दोस्त बलजीत शर्मा ते गुरदीप कौर गिल साहिबा जी।

0: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे सरोतियो, मिति 7 अगस्त दिन शुक्रवार दोपहर 12:10 ते तुसी सुनोगे विशेष सिलसिला मुश्किल दसो हल दसांगे। इस प्रोग्राम तहत तुहाडी मुलाकात करवाई जावेगी बठिंडा शहर दे मेयर श्री पदमजीत मेहता जी नाल। जेकर किसी भी स्रोते ने अपने इलाके नाल संबंधित कोई मुश्किल या समस्या मेयर साहब नाल सांझी करनी होवे ता ओ प्रोग्राम दे प्रसारण दौरान स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर समा नोट कर लवो, मिति 7 अगस्त दिन शुक्रवार दोपहर 12:10 ते सुनना ना भूलना विशेष सिलसिला मुश्किल दसो हल दसांगे, सिर्फ आकाशवाणी बठिंडा ते।
1: फोन दी घंटी बज गई है ते देखदे हां कि अगले स्रोता साडे नाल कौन ते कित्थों जुड़े ने। हैलो,
2: मैडम सत श्री अकाल जी।
1: हां जी सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो ते कित्थों गल कर रहे हो?
2: कृष्ण कुमार पिंड मिड्डूखड़ा बोल रहा है मैडम जी।
1: जी, तुहाडा प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम जी।
1: हां जी, ते गीत केड़ा सुनना चाहोगे सर अज?
2: समाधि फिल्म गीरा मैडम जी।
1: गीत दे बोल दस्स दो सर।
2: जब तक तन में जिया।
1: ठीक है जी, तुहाडी फरमाइश पूरी कर रहे हैं ते सुनाउने आ तुहानू ये गीत।
2: ठीक है, धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद जी, प्रोग्राम विच कॉल करन लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: ठीक है
1: जी।

0: हाँ जी, जिला बरनाला पिंड ढिलवां तो सुखदीप सिंह गिल बोलदा जी, नाल मेरा भतीजा जगप्रीत सिंह गिल।
1: ठीक है जी, प्रोग्राम दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है
0: तुहाडा भी स्वागत जी साडे पिंड ढिलवां दे विच।
1: जी। ते अज किस गीत दी फरमाइश लेके आए हो?
0: गीत जी सीगा थोड़ी पसंद दा ते फिल्म हैगी है मेरी पसंद दी, दिल वाले दुल्हन ले जाने की। एक ही फिल्म दे विच कोई
1: ठीक
0: मर्जी
1: है जी, तुहाडी फरमाइश
0: थोड़ी पसंद
1: पूरी
0: दा।
1: कर रहे हैं। ते सुनते हैं दिलवाले फिल्म दा गीत, सॉरी माफ करना, दिलवाले।
0: बिल्कुल
1: हाँ जी,
0: हाँ जी हाँ
1: ते
0: जी
1: प्रोग्राम
0: चलो
1: विच
0: इन्होंने
1: तुसी कॉल की थी, उदे लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी
0: शुक्रिया जी, धन्यवाद तुहाडा जी।
1: जी

0: कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, कुछ और अब न कहना, कुछ और।
1: जी 0154-2341 नंबर डायल करके जुड़ गए ने अगले श्रोता साडे नाल, कर देना ना गल। हेलो।
2: हाँ मैडम जी, सत श्री अकाल।
1: हाँ जी सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो?
2: मैं मलकीत सिंह, कोठे काम है के शिवगंगा रोड बठिंडा जी।
1: जी प्रोग्राम दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: हाँ जी, ते अज किस गीत दी फरमाइश लेके आए हो?

0: Tish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kambod, secured places in the final rounds of their respective events at the World Athletics Under 20 Championships in Eugene in the USA. The finals will be played on Sunday. Hockey India today announced the 18-member Indian junior women's team for the AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August the 30th to September the 13th. The squad comprises 18 players along with two alternate players and will be led by midfielder Khaidem Shlema Chanu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha resumes proceedings amid opposition ruckus over several issues. Rajya Sabha adjourned till 2:15. Bombay High Court convicts former Tehalka editor Tarun Tejpal in 2013 sexual assault case. Amarnath Yatra resumes after day-long suspension due to security reasons. Orange alert issued for very heavy rainfall over Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. Hockey India announces 18-member junior women's team for AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August 30th. Javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, storm into finals of World Athletics Under 20 Championships. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashvani se dopahar samachar ke saath main Nikhil Kumar. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
2: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
1: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक 15 मिनट तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
3: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।

0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मॉनसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
1: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नियत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
2: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye ji raha hoon. और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक

0: किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
1: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है, और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब

0: कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
1: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है, क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। नगर से इश्फाक शाह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
2: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गदेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
3: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
2: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित, कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन

0: उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज ते अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी ते समा होया है 2:30 ते 27 सेकेंड ते हुण वेला है प्रोग्राम सुरीली दुपहर दा। प्रोग्राम सुरीली दुपहर सुनने वाले तमाम स्रोतियां नूं अमनदीप कौर वल्लों प्यार भरी नमस्कार। तुहाडे भेजे खत ते वट्सएप सुनेहे साडे प्रोग्राम दी रौनक ने ते सानूं बेसब्री नाल उड़ीक रहिंदी है तुहाडे खतां ते वट्सएप सुनेहां दी।
2: असीं अपने स्रोतियां नूं दस दईए कि प्रोग्राम पैगाम दी रिकॉर्डिंग अज शाम 4 बजे कीती जाएगी। जेकर तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे भेजे पैगाम प्रोग्राम विच शामिल होण तां सानूं अपना पैगाम भेज दिओ जी 77173 73146 ते अज शाम 4 बजे तो पहला पहला। नंबर फिर नोट कर लो जी 77173 73146। प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा ऐतवार 9 अगस्त सवेरे 7 बजे। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का समा अज शाम 4 बजे
1: जी। प्रोग्राम चल रहा है सुरीली दुपहर ते प्रोग्राम की शुरुआत कर दिया एक खूबसूरत गीत दे नाल।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती भी तुम्हें मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: मंजरी आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और आरती बताओ कैसी हो, कैसा लग रहा है आज का दिन तुम्हें, कैसा लग रहा है?
2: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बीच में जब धूप खिल जाती है ना तो मौसम एकदम खुशगवार हो जाता है।
1: और खिली धूप में जब बारिश के भीगे हुए पत्ते होते हैं ना तो बिल्कुल चमकदार लगते हैं, धूले साफ लगते हैं, तो मन बड़ा वैसे भी आनंदित हो जाता है। और बारिश लगातार होती है तो लगता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भाई धूप थोड़ी निकले, क्योंकि कपड़े वपड़े सूखे, जो सीलन है वो सब गायब हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और देखो आज हम लोग बात भी करने वाले हैं, विषय बता देते हैं पहले कि उपयोगी टिप्स में हम बात करने वाले हैं बारिश में घर की सफाई।
2: तो आप लोग किस तरीके से बारिश में अपने घर की सफाई करते हैं, या क्या आप उपाय अपनाते हैं अपने घर को साफ रखने के, और जो थोड़ी सी सीलन वाली एक महक सी आ जाती है उसको दूर करने का आप क्या उपाय करते हैं, तो आप हमें लिख कर भेजिए।
1: और देखो बहुत सारे हमारे साथियों ने संदेश भी भेज रखे हैं इस पर। और मुझे कुछ कहना है जो आज हम सेगमेंट लेते हैं उसमें, वो चिट्ठियों का जमाना।
2: तो भाई वो चिट्ठियों का जमाना जो था ना, वो कभी पुराना हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी यादें बसी हुई है,
2: मन
1: है
2: में बसी हुई है। और हम चाहेंगे कि जो भी आप भेजते थे चिट्ठियां, और आपके पास चिट्ठियां आती थी, तो उसका जो आपका अनुभव है, वो आप अपना अनुभव जो है वो हमें लिख कर भेजिए, हमारे साथ साझा करिए उन यादों को, तो हम एक बार फिर से उन पलों को जी लेंगे।
1: बिल्कुल जी लेंगे। और आज और क्या हम लेकर के आए हैं?
2: आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत कोलक्कयिल देवी की अम्मा, जो पर्यावरणविद हैं, और साथ ही हम लेकर आए हैं लुप्त होती पारंपरिक कलाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आपके पास जो भी इनके बारे में जानकारी है आप हमें लिखकर भेजिए, और आप किस तरह से इनसे जुड़े हुए हैं अगर ऐसा भी कुछ है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं।
1: तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं हम लोग गीत, फिर आगे करेंगे बातें।
2: बिल्कुल।

0: सदाओं के साथ थिरकते कदम
1: चलते रे इश्क में पड़ जाते
0: पूरे दबंग अंदाज में
2: दबंग, दबंग, दबंग, दबंग।
0: और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
3: ओके टिको केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
4: मेरा काम ये है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
4: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।

0: मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से। जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
1: निकला गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
2: हाँ तो मंजरी, अब हम बात करते हैं अपने जो नया सेगमेंट जो हम ये लेते हैं कहानी पद्मश्री की। तो इसमें हम आज बात करेंगे कोलक कैल देव की अम्मा, जो कि पर्यावरणविद हैं, यानी पर्यावरण की रक्षा कह समझ लीजिए। तो देव की अम्मा के दादाजी जो थे वो एक वैद्य थे। उनका देव की अम्मा के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था और उन्हीं की वजह से देव की अम्मा में पर्यावरण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उनका विवाह हुआ गोपाल कृष्ण पिल्लई से, जो एक अंग्रेजी के शिक्षक थे। उनके परिवार में सभी महिलाओं को कृषि कार्य करना अनिवार्य था।
3: और देव की अम्मा 1980 तक अपनी सास के साथ धान की खेती में सहयोग करती रहीं। जब उनके पैर में चोट लग गई और उन्हें चलने फिरने से मना कर दिया गया, उसके 3 साल बाद उन्होंने अपने घर के पीछे एक पौधा लगाया और इस तरह उनकी बागवानी की शुरुआत हुई।
2: बिल्कुल। और केरल के अलप्पुझा जिले में उनके घर के आंगन में उन्होंने थोड़े ही समय में एक हरा भरा जंगल उगा लिया था। देव की अम्मा याद करते हुए कहती हैं कि मैं पहले धान की खेती बड़े चाव से करती थी, लेकिन दुर्घटना के बाद मैं लगभग 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही और मुझे धान की खेती छोड़नी पड़ी, लेकिन इससे मुझे एक और महत्वपूर्ण काम करने का मौका मिला।
3: परिवार के सदस्यों की मदद से मैंने 35 साल पहले पौधे लगाना शुरू किया था। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह जो है वो जंगल बन जाएगी। उनके पति और परिवार ने उनका मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके पति हर दिन उनके लिए बीज और पौधे लाते थे। आज भी उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त उन्हें नियमित रूप से पौधे और बीज भेंट करते हैं।
2: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। एक इतनी अच्छी चीज की शुरुआत करी है ना, कि बीज और पौधे देना मतलब कि आप पूरी प्रकृति को सुरक्षा दे रहे हैं। और देवकी अम्मा कहती हैं कि वन संरक्षण में मुझे अपने बच्चों, पोते पोतियों और उनके बच्चों से भरपूर सहयोग मिलता है और वो इसमें बड़ा योगदान देते हैं और वन की सर्वोत्तम तरीके से रक्षा करना चाहते हैं। उनकी पोते पोती छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आते हैं और उनके इस नेक काम में पूरे उत्साह से उनकी मदद करते हैं। उनसे प्रेरित होकर उनकी एक पोती ने पढ़ाई के लिए वनस्पति विज्ञान को चुना ताकि देवकी अम्मा के इस नेक काम में वो योगदान दे सकें।
3: और उनकी बेटी प्रोफेसर डी थैंकमणि, जो तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्यावरण विभाग में प्रमुख हैं, कहती हैं 4 पीढ़ियों ने मेरी माँ के वृक्षारोपण के इस सफर में अपना योगदान दिया। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अम्मा की पोती पोते और उनके बच्चे पुराने पौधों की स्थिति देखने और नए पौधों को लगाने के लिए घर आते थे। और वो कहती हैं कि वृक्षारोपण को लेकर जो उत्साह और उमंग होती है वो किसी त्योहार जैसी होती है। पर्यावरण संरक्षण को अपना लक्ष्य मानते हुए देव की अम्मा पेड़ पौधों को उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए केवल हरी जैविक खाद का ही उपयोग करती हैं। उनके इस जंगल में सागौन, महोगनी, इमली, आम, चीड़, बांस और उनके जैसे तमाम, करीब गिनती नहीं कर सकते, लेकिन अधिक से 3,000 से भी अधिक वृक्ष वहां पर हैं।
2: बिल्कुल। और लक्ष्मी थारू, चीनी संतरा जैसे कुछ दुर्लभ पौधे भी पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियां और फूल देने वाले 200 विभिन्न प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों के अलावा इस जंगल में तालाब, एक आर्द्र भूमि और गाय, भैंस, बैल जैसे पशु भी हैं। और देव की अम्मा अपने काम पर गर्व करते हुए कहती हैं, पक्षियों और जानवरों को जाल लगाकर प्रतिबंधित करने के बजाय मैंने उनके लिए पानी और घोंसले की व्यवस्था की है।
3: परिणाम स्वरूप हम जंगल में मोर, बंदर और अमूर बाज, नील गाय, काला पंख वाला स्टिल्ट और पन्ना कबूतर जैसे विदेशी पक्षी भी देख सकते हैं। पर्यावरण के क्षरण को रोकने और प्रदूषण को कम करने के लिए वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं और कहती हैं पेड़ लगाना सबसे प्रभावी और व्यवहारिक विकल्प है।
2: बिल्कुल। उनका कहना है, हमारा परिवार पिछले 4 दशकों से पेड़ लगाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहा है। उन्होंने जल समस्याओं से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और अब ये वन एक शैक्षिक और पर्यटन स्थल बन गया है। बड़ी संख्या में वनस्पति विज्ञानी, पर्यटक, शोधकर्ता, छात्र देव

0: अम्मा से सामाजिक वानिकी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं।
1: और देवकी अम्मा उन्हें विभिन्न वृक्षों के बारे में बताती हैं, उनके महत्व को समझाती हैं और सतत उपयोग एवं विकास के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के तरीके बताती हैं। अनुरोध करने पर देवकी अम्मा जरूरतमंदों को पौधे भी उपलब्ध कराती हैं। उम्र के कारण अब वो नए पेड़ नहीं लगा सकती हैं और न ही जंगल की देखभाल कर सकती हैं।
0: बिल्कुल। और लेकिन पेड़ों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए वो नियमित रूप से टहलने जरूर जाती हैं। उनकी बेटी ठेंकमणि कहती हैं, 5 एकड़ जमीन की देखभाल करना आसान काम नहीं है, लेकिन हर सुबह वो 5 मिनट के लिए ही सही टहलने जरूर जाती हैं। क्योंकि वो बहुत कम ही पौधे लगा पाती हैं, इसलिए वो पेड़ों से बातें करती हैं। इस तरह उन्हें जंगल की उपेक्षा का एहसास नहीं होता।
1: और देवकी अम्मा को उनके समर्पण और अथक परिश्रम के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और नारी शक्ति पुरस्कार, उन्हें राज्य सरकार द्वारा भी कई पुरस्कार प्राप्त हैं, जैसे वन मित्र पुरस्कार, हरि व्यक्ति पुरस्कार और स्वदेशी विज्ञान पुरस्कार, भू मित्र पुरस्कार और साथ ही अलापुझा जिले का सामाजिक वानिकी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और पर्यावरण के प्रति उनके 4 दशकों के समर्पित योगदान को मान्यता देते हुए बेटर इंडिया ने 2019 में उन्हें हम सभी को बचाने वाले 10 नायकों में से एक के रूप में भी शामिल किया था। और अब 2026 में देवकी अम्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
1: देखो क्या कितनी अच्छी सी उन्होंने ये चीज करी कि पौधे लगाने शुरू किए। और उनकी इस कहानी से हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि
0: बिल्कुल
1: हम भी आसपास की जगहों को हरा भरा रखें, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हमारा जो गांव है, हमारा घर है, शहर है, उसके आसपास का सभी
0: बिल्कुल।
1: वातावरण बहुत
0: और
1: खूबसूरत
0: ये
1: हो
0: देख के
1: सके।
0: भी अच्छा लगेगा ना कि कितना रचनात्मक कार्य हमने किया है, कि देखो जो बीज बोए थे, जो छोटे छोटे से
1: सही
0: पौधे
1: बात
0: लगाए
1: है,
0: थे, वो कितने बड़े पेड़ बन गए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: मंजरी, डोर से तो प्यार की बंध जाते हैं
1: बिल्कुल बंध जाते हैं, क्योंकि
0: ना.
1: प्यार चीज ऐसी है कि वो हर को अपने आप में बांध लेता है, और जब जहां पर पेड़ पौधों से प्यार होता है
0: बिल्कुल.
1: तो उसका अलग ही, उसकी अलग ही बात होती है, और जो हमारी जो कलाएं होती हैं उनका भी एक अलग रंग होता है
0: बिल्कुल.
1: ना.
0: और जो हमारी परंपरागत जो कलाएं थी ना, वो आज थोड़ी बहुत ऐसे हो रहा है ना कि लुप्त सी होती जा रही है. कुछ कलाएं ऐसी हैं जो लुप्त सी होती जा रही हैं, और उनको सहेजना बहुत जरूरी है
1: बिल्कुल
0: जिससे कि हमारी जो पहचान है वो बनी रहे.
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही कुछ कलाओं की जो लुप्त हो रही हैं, और पूरी दुनिया से हमारा देश अलग ही इसीलिए है क्योंकि ये जो है वो विविध तरीके की संस्कृतियों और समृद्ध परंपराओं का देश माना जाता है. और इस सांस्कृतिक ताने बाने के केंद्र में हमारी समृद्ध लोक कलाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं. हालांकि आधुनिकीकरण की जो इस समय दौर चल रहा है उसमें उसकी तेज गति के बीच में इनमें से कई पारंपरिक कलाएं विलुप्त होने के खतरे का सामना भी कर रही हैं. और
1: बिल्कुल
0: इस देश के हर क्षेत्र और समुदाय ने अपनी एक विशिष्ट कला को जन्म दिया है, चाहे वो मधुबनी हो चित्रकला, और या फिर वारली कला, पट्टचित्र, फड़ चित्रकला, कठपुतली, मिट्टी के खिलौने, हथकरघा, बुनाई, लोक नृत्य, लोक संगीत और बांस बेत की शिल्पकला जैसी अनगिनत कलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं. लेकिन आज समय के बदलते प्रवाह में ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं.
1: बिल्कुल सही कहा आरती तुमने. और इसी के साथ ही कश्मीर की जटिल लकड़ी की नक्काशी से लेकर बंगाल और उड़ीसा के जीवंत पट्टा चित्र कला, हर एक कला के रूप में अपने साथ सदियों का एक इतिहास है, उनका परंपरा और कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं. फिर भी जैसे जैसे शहरीकरण फैलता जा रहा है, हमारी सदियों पुरानी विरासत और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके लुप्त होते जा रहे हैं. और जैसे कि पट्टाचित्र, जो कि उड़ीसा की एक लोक कला है जिसमें कपड़े या कैनवास पर जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं, इन चित्रों के विषय अक्सर पौराणिक कथाओं से प्रेरित होते हैं और रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाते हैं. पट्टाचित्र चित्रों की जो अनूठी विशेषता होती है, और इनमें पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं.
0: बिल्कुल, ये पर्यावरण को देखो, जो परंपरा आगे हमारी जो कलाएं थी पर्यावरण के अनुकूल हुआ करती थी, लेकिन संरक्षण की कमी और घटती मांग के कारण ये कला विलुप्त होने के कगार पर है. और बिदरी वेयर, जो कि एक धातु शिल्प है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के बीदर में हुई थी, इससे इसमें क्या होता है कि जस्ता और तांबा के काले मिश्र धातु पर चांदी या पीतल के तार जड़े जाते हैं, और जटिल डिजाइन और पैटर्न तेज छेनी की सहायता से धातु पर उकेरे जाते हैं. बिदरी वेयर का उपयोग परंपरागत रूप से बर्तन, आभूषण और सजावटी सामान बनाने में किया जाता था. हालांकि श्रम साध्य प्रक्रिया और कच्चे माल की उच्च लागत के कारण ये शिल्प भी अब कुछ ही कारीगरों द्वारा किया जाता है.
1: और इसके साथ ही सुजनी, जो कि बिहार की एक कढ़ाई कला है जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन धागों से ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं, ये शिल्प परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था और रजाई और चादरों को सजाने का एक तरीका था. हालांकि सस्ते मशीनी कपड़ों की उपलब्धता के कारण सुजनी कढ़ाई की मांग में गिरावट आई है. इसके अलावा धोकरा कला, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में उत्पन्न धातु ढलाई की एक कला है, इसमें मोम ढलाई तकनीक का उपयोग करके जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं.
0: बिल्कुल,
1: और
0: और बिल्कुल इसके साथ में हम धोकरा कला अपनी अनूठी शैली के लिए भी जानी जाती है, और इसका उपयोग होता है अक्सर मूर्तियां और सजावटी वस्तुओं को बनाने में. और कठपुतली कला, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है जो आज भी कहीं कहीं होती है, तो जो कभी गांव गांव के लोगों का मनोरंजन करती थी, कठपुतली के माध्यम से लोक कथाएं, वीर गाथाएं और सामाजिक संदेश प्रस्तुत किए जाते थे. लेकिन आज क्या है कि मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन के दौर में ये कला भी कहीं ना कहीं खोती जा रही है.
1: बिल्कुल. और इसी प्रकार बहुरूपिया कला भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है. आरती, कलाकार विभिन्न पात्रों का रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देते थे. लोक नाट्य की कई विधाएं भी आज संकट में हैं. महाराष्ट्र की तमाशा, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, कर्नाटक का यक्षगान, बंगाल की जात्रा, उत्तराखंड की पांडवानी जैसी अनेक प्रस्तुतियां कभी जनजीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी, आज इनके दर्शक और कलाकार दोनों घटते जा रहे हैं.
0: बिल्कुल, और हम बात करें तो इसके अलावा पिंजराकारी, जो कि कश्मीर की एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ

0: कला है जिसमें देवदार जैसी मजबूत जो लकड़ी होती थी उस पर बिना कीलों या धातु के सहारे, सोचिए, अत्यंत बारीक जालीदार डिजाइन तैयार किया जाता है। ये कला मुख्यतः खिड़कियों, दरवाजों, रोशनदानों, बालकनियों और धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों की सजावट में प्रयोग की जाती रही है।
1: और इसकी विशेषता यह है कि ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को इतनी कुशलता से जोड़ा जाता है कि उनसे सुंदर ज्यामितीय आकृतियां बन जाती हैं, लेकिन बढ़ती

0: जीवंत प्रतीक है। आर्थिक कलाएं तो इतनी सारी हैं कि
1: बिल्कुल,
0: एक एक उसमें समेटना बहुत ही मुश्किल होता है।
1: तो हम
0: तो
1: बिल्कुल इसकी
0: बिल्कुल
1: तैयारी करेंगे कि हम अगली बार और कलाओं को लेकर आए जो लुप्त होती जा रही हैं। तो ये जो पिंजराकाली जो जो कला है सच में बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। तो इस तरह की जो कलाएं होती हैं जटिल तो होती ही हैं डिजाइन और पैटर्न से, लेकिन इनको हम फिर भी करते हैं, तो इनको इनका इनको सहेजना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम
1: एक गीत
0: गीतों
1: सुन
0: को भी
1: लेते हैं।
0: सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो, कितना प्यारा सा ये गीत हम लोग ने सुना, और जो हमारी लोक कलाएं हैं उसके बारे में क्या संदेश लिखा हुआ है?
1: बहुत से संदेश आए हैं। तो एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि भारत की लुप्त होती है पारंपरिक कलाएं हमारी प्राचीन संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का अनमोल हिस्सा हैं, जो आधुनिकता और मशीनी युग के प्रभाव से धीरे धीरे गायब हो रही हैं। इनमें मुख्य रूप से कठपुतली कला है और सिक्की घास की कला और आला गायन शामिल है।
0: और देखो, बातें करते करते समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल, और छोटे से अंतराल के बाद फिर हम लोग सखी सहेली कार्यक्रम में हाजिर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में फिर सभी का करते हैं स्वागत। तो आरती बताओ, कौन सा संदेश तुम लेकर पढ़ने वाली हो?
1: बिल्कुल, लेख हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से चिट्ठी के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने, और चिट्ठियों की इतनी इतना बढ़िया उन्होंने लिखा था कि हमने सोचा कि पहले इन्हीं ले लेते हैं, सीखो फिर हम कलाओं की बात करेंगे।
0: हाँ
1: तो चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से मन के जज्बात जो थे वो कागज पर उकेर दिए जाते थे। डाकिया जब घर के सामने घंटी बजाते हुए निकलते थे तो दौड़कर दरवाजे पर आ जाते थे कि शायद हमारी भी कोई चिट्ठी हो। रक्षाबंधन पर भाई को लिफाफे में रखकर सुंदर राखियां, कुमकुम, अक्षत भी भेजे जाते थे। फिर जब जब जवाब आता था तो उस चिट्ठी को भी बार बार पढ़ते थे और बहुत संभाल कर रखते थे। ऐसे कितने ही पत्र हैं जिन्हें आज भी किसी की यादगार के तौर पर संभाल कर रखा है।
0: और
1: तो
0: देखो
1: इतना
0: हमारे
1: प्यारा सा था ना कि रुका ही
0: यहाँ
1: नहीं गया।
0: देखो हमारे साथी लिखते हैं आरती, पारंपरिक कलाएं हमारी संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन के अमूल्य धरोहर हैं। और लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कठपुतली, चित्रकला और कई अन्य कलाएं हमारी पहचान को जीवंत बनाए रखती हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली, मशीनों के बढ़ते उपयोग और बदलती रुचियों के कारण ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। अनेक कलाकारों को उचित सम्मान और आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाने से नई पीढ़ी भी इन कलाओं से दूर होती जा रही है। यदि समय रहते इनका संरक्षण, प्रचार प्रसार और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती है। पारंपरिक कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बहुत सही बात आपने लिखी
1: बिल्कुल
0: है और हमें अपनी कलाओं को बचाने का प्रयास पूरा पूरा करना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है क्योंकि हमारी जो पीढ़ी आ रही है उसको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या कलाएं थी हमारे यहाँ। तो एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि लुप्त होती जो पारंपरिक कलाएं हैं, ये विषय बहुत ही अच्छा लगा। आजकल हमारी जो पारंपरिक कला है जैसे कि लोक थे, लोक संगीत का ये बहुत ही सुनने में ज्यादा अच्छा लगता था, वो भी कम हो गया है। नुक्कड़ नाटक भी हुआ करते थे, वो भी अब कम हो गए हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग इन सब जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको देखना ज्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो सुनना ही पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन सब चीजों की तरफ वापस जाना चाहिए जो इस पारंपरिक कला के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए हमें। और ऐसे ही हम उनको कर सकते हैं जब हम जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको जीवित रखें, तभी हम उनकी सहायता कर सकते हैं इस तरह से।
0: बिल्कुल। और लुप्त होती है पारंपरिक कलाएं के बारे में लिखते हैं हमारे साथी, भारत अपने समृद्ध कलाकारों का एक महत्वपूर्ण देश रहा था और रहा है भी, और अब वो भी है। भले ही पूजा स्थलों पर उकेरी गई कला को अब उतने तन्मयता से हम आज के इस मोबाइल युग में नहीं उकेर रहे हैं, किंतु समय के साथ लुप्त हुई कलाओं की तरफ अग्रसर तो हम हो ही रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भी विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपने विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करने में आगे आते हुए विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर प्रदर्शित भी कर रहे हैं, किंतु अभी भी बहुतेरी कलाएं लुप्त प्राय ही हैं। और उस तरफ भी हमें अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम अपने रोजी रोटी के लिए ही इनके वर्ण कर रहे हैं, जबकि इन कलाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और बहुत ही विशाल है।
1: बिल्कुल
0: और कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी कला है आपको आती है, या आपके परिवार में किसी बुजुर्ग को जो कलाएं आती हैं, तो उनको सबको सिखाना शुरू करें, और सीखने
1: बिल्कुल
0: की एक ललक भी होनी चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं, तो आप कला को बहुत आगे तक जीवंत रख
1: बिल्कुल,
0: सकते हैं।
1: क्योंकि जो ये कलाएं हैं ना ये हमारे देश की पहचान है, इनको इसलिए इनको हमें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो अब हम एक गीत सुने।

0: मेरे सामने आए तो बिल्कुल मन पे संयम रहता ही नहीं है।
1: और जब जब चिट्ठियां घर में आती हैं तो उनको लेने के लिए उनको कि आज हम सबसे ज्यादा चिट्ठी उठा ले, हम पढ़ेंगे, तो उसका एक अलग ही मजा आता है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो हमारे साथी क्या लिखते हैं इसके
0: हमारे
1: बारे में?
0: साथी लिखते हैं, चिट्ठियों का वो जमाना भी क्या खूबसूरत था, कागज पर लिखे हर शब्द में दिल की धड़कन बजती थी, डाकिये की आहट सुनते ही उम्मीदें दरवाजे तक दौड़ जाती थीं, स्याही से लिखे अल्फाज बरसों तक यादों की खुशबू महकाते रहते थे, ना कोई जल्दबाजी थी, ना एक पल में जवाब पाने की चाह, बस इंतजार था, अपनापन था और रिश्तों की सच्ची गर्माहट थी। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन हाथों से लिखी चिट्ठियों जैसा एहसास, अपनापन और भावनाओं की गहराई आज भी बेमिसाल है।
1: क्या बात है। और बहुत लोगों ने चिट्ठियां संभाल कर भी रखी होंगी आती। और
0: बिल्कुल।
1: हमारे साथी लिखते हैं कि मुझे भी कुछ कहना है, जो मजा खत यानी चिट्ठियों के इंतजार में हुआ करता था, अब वो कहाँ। चाहे वो माता पिता हो या पति पत्नी या हो भाई बहन, अब मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से सब छीन गया है। और
0: बिल्कुल।
1: वाकई में सही बात है, चिट्ठियां लिखना लोगों का कम हो गया है। और एक साथी लिखते हैं कि आज विषय वस्तु अच्छे हैं, खासकर चिट्ठियों का जमाना। उंगलियों के कुछ स्पर्श से मीलों दूर बैठे व्यक्ति का संदेश पलक झपकते ही पहुंच जाता। आज का संचार माध्यम के तीव्र शोर के बीच कहीं पीछे छूट गया है वो शांत, धैर्यवान और आत्मीय चिट्ठियों का जमाना। वो एक ऐसा दौर था जब संदेश सिर्फ सूचना नहीं बल्कि हृदय की धड़कन और भावनाओं का सजीव दस्तावेज हुआ करते थे। डाकिया जब खाकी झोला टांगे गली में आता था तो ऐसा लगता था जैसे पूरे मोहल्ले की उम्मीदें और खुशियां उसके साथ चल रही हों। चिट्ठी का आना एक उत्सव होता था। डाकिया सिर्फ कागज का पुर्जा नहीं लाता था, वो दूर देश से सहेज कर भेजी गई अपनों की सांसें और सिसकियां लेकर आता था।
0: वाह,
1: कागज का चुनाव स्याही का रंग और कलम की बनावट में लिखने वाले का व्यक्तित्व झलकता था। चिट्ठियों में एक अद्भुत इंतजार का सौंदर्य था। संभाल कर रखी गई वे पीली पड़ चुकी चिट्ठियां आज भी जब खुलती हैं तो गुजरे जमाने की खुशबू पूरे कमरे में बिखेर देती है। क्या
0: बिल्कुल।
1: बात है।
0: बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और एक और साथी है जो लिखते हैं कि चिट्ठियों के जमाने का मेरा अनुभव जीरो है, मैंने आज तक कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, जबकि मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे, उसके बावजूद कभी मौका नहीं आया, क्योंकि हमारे जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। अरे फिर भी आपको लिखना
1: बिल्कुल।
0: चाहिए
1: और
0: था
1: हमारे साथी लिखते हैं
0: ना।
1: आते कि चिट्ठियां या पत्र सबसे पहले स्कूल में सिखाया जाता था, उसके बाद हम लोग घर में अपने से बड़ों को देखकर सीखते हैं कि क्या क्या लिखना है। मैंने भी अपने बड़ों से सीखा है। मेरे बड़े भाई बड़े बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखा करते थे, सुंदर सुंदर लिफाफे आदि थे और खूबसूरत खूबसूरत लेटर पैड भी ले लेते थे। जब बड़ा हो गया, किसके पत्र लिखने लगा, तो मैं भी सुंदर सुंदर लिफाफे लाता था और सुंदर सुंदर लेटर पैड। मैंने शुरू में कभी लिखा हुआ नहीं तो मतलब उन्होंने शुरू किया था, हमेशा खूबसूरत लिफाफा खूबसूरत लेटर पैड लिया करता था और अच्छी सुगंध लेटर में तो खूबसूरत पाउडर भी डाल दिया
0: अरे
1: करता,
0: वाह।
1: महकता हुआ यानी कि पाउडर डाल दिया करता था। इन्होंने खूबसूरत लिखा है तो बाद में तरीके से साफ भी कर दिया जाता था। कभी कभी सुगंध के लिए करता था और कभी कभी उसमें इत्र भी
0: क्या
1: डाल दिया
0: बात है, महकती हुई चिट्ठी
1: करता
0: जिस तक भी पहुंचती होगी, वाह
1: था।
0: क्या बात है।
1: बिल्कुल
0: और एक और साथी जो लिखते हैं कि वो भी क्या दौर था, और उस समय जब कहते हैं कि लिफाफे में गुलाब की सूखी गुलाब की पत्तियां, तो कभी चिट्ठियों में हाल चाल के साथ कुछ शायरियां भी लिखी होती थी, एक ही चिट्ठी को ना जाने कितनी बार पढ़ा जाता था, उन हाथों से लिखी चिट्ठियों में आत्मीयता भी होती थी और स्याही की सौंधी जो महक होती थी उसमें अपनापन भी होता था। आज भी जब कभी फुर्सत में पुरानी चिट्ठियों को पढ़ती हूँ, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आंखें भीग जाती हैं।
1: क्या बात है। और इसके साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं, उस जमाने में चिट्ठी सिर्फ कागज ही नहीं पूरा परिवार हुआ करती थी। पिताजी का प्रेम, माँ की ममता और बहन का प्यार उसमें घुला होता था। बेटा समय से खा लेना, तबीयत का ध्यान रखना, बहन की खुशी राखी और गुलाब की पंखुड़ी के साथ आती, भैया त्योहार पर आ जाना, पड़ोस की खबर, खेत की फसल, गांव का मेला, सब उसी दो पन्नों में समा जाता। चिट्ठी आने में महीना लग जाता था, इसलिए हर शब्द तौलकर लिखा जाता था। डाके की घंटी बजते ही घर में हलचल मच जाती। खत को पहले बड़े पढ़ते, फिर सबको सुनाते। एक चिट्ठी महीनों का इंतजार और सुकून हुआ करती थी। मैंने अपने पिताजी को बहुत पत्र लिखे, क्योंकि सर्विस के चलते वो बाहर रहते थे। उनके लिखे पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। आज मोबाइल में तुरंत सब कुछ मिल जाता है, पर उस कागज में जो परिवार बसता था, जो दर्द और दुआ होती थी, वो अब मोबाइल की स्क्रीन में कहीं खो गई है। वाकई सही बात है, उस जमाने में जो चिट्ठी का मजा था वो अलग ही था।
0: बिल्कुल
1: लेकिन आज भी कोशिश कीजिए कि अपनों को आप चिट्ठी लिखिए, क्यों व्हाट्सएप पे

0: भेज दे
1: हाँ बिल्कुल।
0: है ना।
1: अब एक साथी है जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना बहुत ही अच्छा था, जब भी मन हो निकाल लो और पढ़कर खुश हो जाओ। मैंने तो ढेर सारी चिट्ठियां अभी भी संभाल कर रखी हुई हैं और जब मन होता है निकाल कर पढ़ लेती हूँ। रिश्तेदारों के जो उनके जो खत आते थे, चिट्ठियां होती थी है ना, वो जो अपनी सहेलियों को लिखती थी, तो जबकि वो इस शहर में थी, पर जब भी कॉलेज बंद होता तो उसे भी चिट्ठी लिखती थी। मेरे पापा जी बोलते थे कि कितनी जितनी देर में चिट्ठी मिलेगी उससे जल्दी तो तुम उसके घर पहुंच जाओगी, घर में मिल लोगी जाके।
0: चलो फिर इसी बात पर एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे
1: बिल्कुल
0: बढ़ते हैं।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती देखो कितनी सारी हम लोग की बातें हैं, है ना।
3: और हमारे जो साथी हैं वो लिखते जा रहे हैं, तो एक हमारी साथी लिखती हैं कि चिट्ठी लिखना, अपने मन की भावना अपनों तक पहुंचाना बड़ी पुरानी परंपरा है, और पुराण कथा में विरह व्याकुल दमयंती ने अपनी पीड़ा कमल पत्र पर लिखी थी और राजहंस के साथ

0: अपने प्रियतम नल राजा के पास पहुंचाई थी। पौराणिक ऐतिहासिक काल में भोजपत्र और ताड़पत्र, ताम्रपट या कपड़े पर संदेश लिखकर भेजे जाते थे। बाद में कागज, कलम, स्याही वाले चिट्ठियों का सुहाना जमाना आ गया। चिट्ठी में प्यार, भाव, भावनाएं, मूर्त अमूर्त कल्पनाएं, सुंदर सुहाने सपने, सब कुछ साकार होता है। और साथ ही साथ अपनी प्रिय व्यक्ति का हस्ताक्षर, उसकी लिखाई से स्पर्श कर व्यक्ति की अस्तित्व का एहसास भी मिल जाता है। संजोई ही चिट्ठियां जब भी चाहे हम देख सकते हैं। चिट्ठी का इंतजार, बेचैनी, रंग रूप, रस गंध, ये सारी बातें आज की डिजिटल चैट, ई और इन सब चीजों में कहाँ मिलती हैं।
1: और हमारे साथी एक लिखते हैं कि पहले चिट्ठियों को एक नुकीली तारनुमा जिसमें आधार में गोल लकड़ी रहता रहती थी, उसमें घोप कर सुरक्षित रखा जाता था। 4 महीने पहले गांव में मुझे 1978 को पिताजी को मेरा लिखा स्याही वाला अंतर्देशी मिला। अब पिताजी तो नहीं, मगर उस चिट्ठी को संभाल कर रखा है इन्होंने। और लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भावनाओं, सब्र और एक खास अपनापन का दौर था। लोग पोस्टकार्ड, अंतर्देशी पत्र पर लिफाफों का इंतजार करते थे।
0: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखती हैं कि कभी एक वक्त था जब चिट्ठियां रिश्तों की सबसे प्यारी आवाज हुआ करती थी। हर शब्द सोच समझ कर लिखा जाता था और हर पन्ने में अपनेपन की गर्माहट बसती थी। शायद यही वजह है कि आज भी पुरानी चिट्ठियां हाथ में आते ही बीता हुआ समय फिर से मुस्कुरा उठता है। पहले चिट्ठियां सिर्फ खबरें नहीं लाती थी, वो दूरियों को भी थोड़ा कम कर देती थी। कागज पर लिखे शब्दों में धड़कनों की सच्चाई होती थी और स्याही में अपनेपन का रंग। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इंतजार, वो मिठास बिल्कुल छूट जाती है। तो पुरानी चिट्ठियों की सबसे खास बात यही है कि उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें फेंक नहीं सकते हम। वो किताबों में, संदूकों में, यादों में बरसों तक संभाल कर रखी जाती थी, क्योंकि वो कागज के टुकड़े नहीं, किसी के अपने दिल से निकले हुए शब्द हुआ करते थे।
1: चलो एक गीत सुन।

0: आरती, बारिश के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि बारिश जब आ जाती है तो सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और घर में
1: बिल्कुल
0: कैसे रखें सफाई, तो इसके लिए देखो घर के जो पावदान है उनको आप नियमित धोएं, गीले हो तो हटाएं, और जो बाहर पहन जाने वाली चप्पलें होती हैं उनको बाहर रखें, घर में अलग चप्पलों का यूज करें, और घर में कहीं भी अगर आपको टूट फूट लग रही है या छत पर भी टूट फूट लग रही है, तो नालियों में कुछ कचरा फंसा है तो वहां पर भी आप ध्यान दें कि उसकी सफाई नियमित करते रहें, और घर की
1: बिल्कुल
0: दीवारों दीवार जो होती है वो कहीं चूना पपड़ी कहीं टूट फूट दिख रही है तो उसको समय रहते ही उसमें आप पेंट कलर वगैरह करा ले तो अच्छा रहता है।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और एक
0: इसके
1: हमारे
0: साथ ही
1: बिल्कुल हमारे एक
0: हाँ
1: साथी हैं जो लिखते हैं कि बारिश के मौसम में नमी, सीलन और कीचड़ की वजह से घर जल्दी गंदा होता है, तो फर्श को एकदम सूखा सूखा रखें, पोछे के पानी में कीटाणुओं को दूर करने वाला कोई लिक्विड मिलाइए, या बदबू और कीड़ों से बचाने के लिए कपूर रख सकते हैं या फिर नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं, आप ये सब चीजें करें।
0: बिल्कुल। और जो चीजें फिसलने का बहुत डर रहता है तो जहां भी आप देखे तो वहां पर आप उस कपड़े से पोछा लगाएं, और पोछे में नमक या कपूर डालकर भी आप पोछा लगा सकते हैं
1: बिल्कुल
0: जिससे कि कीटाणु नहीं आएंगे, और घर के दरवाजे खिड़कियों की नियमित पोछाई पोछाई करते रहे जिससे कि वहां पर नमी से क्या होता है धूल गर्दा जमा हो जाती, तो इस तरह का बारिश के मौसम में हमें ख्याल रखना चाहिए। और फिलहाल तो एक सुनते हैं गीत।

0: तो आरती देखो, प्रोग्राम बातें करते करते
1: बिल्कुल।
0: समापन की ओर हो गया है, तो आज सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, श्रावण मास आ गया है। आज का ये हेलो फरमाइश कार्यक्रम हमने श्रावण मास को समर्पित किया है और आपसे कोशिश की है सावन को लेकर कुछ बातें करने की। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। दृश्य मनोरम वर्षा सावन, सलिल पवन संग चूम मगन, धरती कर मादक अवगाहन, हरित धरे परिधान बदन, रमणी करुणा अटखेल करत, सौंदर्य सुवासित सुबह करे, रमणीक बने रसना निरखत, दिग मानस रंजन सरस करे, रसधार गिरे घिरते बदरा, तन वसन कपोल निढाल करे, मन चंचल भाव भरे बहुधा, सुरभित शर संधान करे। तो ये कविता आप सभी के नाम, और शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार,
1: हम प्रेमपाल गंगवार बोल रहे हैं नवाबगंज बरेली से।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है बरेली। बरेली की क्या खूबी है बताइए शहर की। बचपन में हमने
1: तो
0: देखा कि बरेली की हमारे पास जो है लकड़ी की बास्केट जिसे कहते हैं वो आया करती थी हमारे घरों में। कहते थे भी बरेली से हम लेकर आए हैं, ये बरेली से लेकर ये ट्रे आए हैं।
1: ये जो बचपन में जब चलना सीखते थे उसको बैलगाड़ी बोलते थे, ये फेमस है। और अभी तो क्या कहते हैं, सावन का महीना चल रहा है तो अभी भोलेनाथ की बरेली से भी जाना जाता है, हमारा नाथ नगरी बरेली।
0: अच्छा, तो आपके बरेली में क्या हो रहा है इन दिनों बताइए, श्रावण मास में खास तौर से।
1: हम यही बताना चाहेंगे कि सोमवार को खैर बड़े भक्तों से जल चढ़ाते हैं कचला घाट से लाके भोले शंकर जी को, लेकिन बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा, गर्मी हो रही है।
1: हाँ,
0: लेकिन जो श्रद्धा रखते हैं भगवान शिव के ऊपर वो तो भक्त आ ही रहे हैं, और श्रावण मास में जो पूजा की जाती है वो तो कर ही रहे हैं ना मंदिरों में आके।
1: हाँ मैम जी, ये तो बात ठीक है, मंदिर में बड़ी प्रेम श्रद्धा से पूजा करते हैं। इतनी दूर लाइन लगती है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लाइन लगती है। जब तीसरा और जब चौथा सोमवार आता है सावन का तो बहुत लंबी कतार लग जाती है मैम जी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और यही श्रावण मास की खासियत भी है।
1: और भी जाना जाता है क्योंकि इसमें हमारे बरेली का सुरमा जी मशहूर है।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: जो आंखों में लगाते ही आंखों की सुंदरता बढ़ जाती है।
0: आंखें कजरारी दिखने लग जाती है ना। बहुत अच्छा लगा, तो बताइए आपको
1: हाँ
0: कौन सा
1: जी,
0: गीत
1: और
0: सुनवाए।
1: गाना रहेगा आई मिलन की रात का, सावन वाला आया है घटा से बरसा है पानी।
0: अरे वाह, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते, आपको पता है कि आज हम बोल रहे हैं?
1: जी हम तो आपकी आवाज फट से ही पहचानते हैं।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: जी डार साहिल बात कर रहा हूँ श्रीनगर से।
0: अरे आपने पहले भी फोन किया है हमें।
1: जी बिल्कुल,
0: देखिए हम भी आपकी आवाज पहचानते हैं।
1: शुक्रिया। बिल्कुल, जो रेडियो का विविध भारती का रिश्ता है ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है आपका सामयिन के साथ, और जो लिसनर है उनका आपके साथ तो बहुत ही अच्छा। ये जो एक बहुत बड़ा परिवार है,
0: जी
1: मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका परिवार है ये खाली हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरे दुनिया में है आपका परिवार विविध भारती के जरिए।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और आपने विविध भारती को एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है जिसके वो काबिल है और वहीं पर वो विराजमान है। लेकिन हमारे श्रोता अगर उस ओहदे को समझते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा मुझे बताइए, अभी श्रावण मास शुरू हो गया है तो श्रीनगर
1: जी
0: में कैसा मौसम चल रहा है और क्या ऐसा कुछ महसूस होता है कि सावन का ये जो महीना है कुछ खास असर लाता है?
1: जी पहले तो यहाँ इतनी बारिश नहीं होती थी। ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना दीदी, तो ये बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो सैलाब का भी खतरा हुआ बहुत
0: अच्छा
1: ज्यादा। चाहे वो यहाँ का डल लेक हो या यहाँ की जहलिम हो, यहाँ का लेदर वैली हो, तो उनमें बहुत पानी आया था, तो फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से वो ठीक हो गया और सैलाब का खतरा जो था वो टल गया।
0: बहुत
1: जी
0: गंभीर बात हो गई। तो बिल्कुल सही कहा कि बारिश नहीं हो तो मुश्किल है और अगर अंधाधुंध हो जाए और सैलाब आ जाए तो और भी मुश्किलात पैदा हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर हम 10 पेड़ काटे तो हम एक भी नहीं लगाते हैं, अगर हम पेड़ काटे तो हमें वहाँ नए पेड़ लगाने होते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी
0: आपने
1: बिल्कुल,
0: सही कहा।
1: हमें ऐसा कुछ करना है कि जो आने वाली नस्ल है हमें उनके लिए, ये जो हम क्लाइमेट है हमें उनको लिए ये बचा के रखना है।
0: बहुत अच्छे विचार आपके। और अब सुन लेते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: जी फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान, का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है, मैं ना बोलूंगा मैं
0: अरे
1: ना
0: वाह,
1: बोलूंगी।
0: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: जी नमस्कार
0: हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए।
1: जी। मैं सिक्किम गैंगटोक से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ मैडम। तो
0: बहुत ही प्यारा नाम है। तो
1: आपका
0: अर्जुन नाम तो बहुत ऐसा नाम है जिस पर अक्सर हम उदाहरण देते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी। अर्जुन की बात जब भी आती है तो मछली की आंख आ जाती है। तो आप में क्या गुण है बताइए, अर्जुन का कोई गुण आपके अंदर है?
1: गुण तो बहुत सारे हैं मैम, लेकिन बताना थोड़ा मुश्किल है
0: अच्छा, क्या करते हैं आप अर्जुन जी?
1: जी। मैं तो घर पर ही काम करता हूँ, रेडियो सुनता हूँ। रेडियो सुनना मेरा हॉबी है। बहुत सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टेशन सुनता हूँ, बहुत आनंद मिलता है मुझे। सबसे पहले तो विविध भारती मुंबई का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। विशेष लोग आप लोग इतनी दूर से मेरे लिए इतनी अच्छी कार्यक्रम लाती है ना, के लिए
0: जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका हेलो सखी सहेली है ना, दिन में आता है गीत माला नाचने वो उठाए गीत।
0: तो अभी आप इतने सारे रेडियो स्टेशन सुनते हैं, कोई कॉमन बात आपको लगी कि किसी खास विषय पर लगभग हर आकाशवाणी इन दिनों बात कर रहा होगा?
1: जी जी बिल्कुल, सावन ऐसा पर्व है ना, लेकिन सब

0: पानी बनाते है और आदमी का चारों तरफ लेता है ना। श्रावण महीना बहुत ही खूबसूरत महीना है
1: जी।
0: ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हिंदू लोग में, जैसे कि आज भी मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, तो आज हम भी जो है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रावण मना रहे हैं, ताकि हम अपने कार्यक्रम के जरिए जहां बारिश नहीं हुई है वहां पर सावन की बौछार गीतों के जरिए हम बरसा दें, हमारा ये उद्देश्य है। तो आज बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको, क्या आप भी कोई श्रावण मास का गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: गीत ये सावन महीना के सुना दीजिएगा, जरा सावन बसंत बहार, लता जी और सुरेश भास्कर के आवाज में सिंदूर फिल्म।
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी
0: नमस्कार
1: जी, मैं अमर सिंह डील बोल रहा हूँ, दिलवाली पटा छबड़ा राजस्थान से।
0: क्या हाल है आपके राजस्थान के?
1: बढ़िया ठीक ठाक है दीदी।
0: श्रावण का महीना आ गया है, भगवान शिव की आराधना का समय है, हरियाली और ये प्रमुख त्योहारों का समय आ गया है कि पवित्र महीना आ गया है। राजस्थान में बरसात हो रही है या नहीं?
1: रात तो हो रही थी बरसात,
0: अच्छा
1: खूब बरसात हुई रात को। अभी तो मतलब बढ़िया फसल है यहाँ पर, तो
0: हाँ
1: मन तो खेती किसानी करते हैं।
0: अच्छा, तो फसल को अच्छा हो रहा है ना फायदा?
1: हाँ बढ़िया फायदा हो रहा है, बढ़िया पानी गिर रहा है।
0: आपके खेत में कौन सी फसल है?

0: अपने तो मक्का है, सोयाबीन है।
1: तो मक्का और सोयाबीन तो पानी ज्यादा मांगता है ना,
0: पानी इतना गिर रहा है जो पानी फसल के लायक तो गिर रहा है पानी।
1: तो अच्छी तादाद में मक्का और सोयाबीन की खेती होने वाली है इस बार आपके यहाँ।
0: जी बढ़िया होने वाली है, बारिश से बढ़िया फसल दिख रही है और साल किसी बढ़िया है बारिश।
1: अच्छा, आप महसूस कर रहे हैं कि सावन का मौसम आ गया है,
0: जी कर रहे हैं दीदी, बहुत बढ़िया लगता है सावन का महीना, हरियाली हरियाली।
1: तो आपका खेत खलियान तो बहुत ही सुंदर लग रहा होगा बरसात की
0: हाँ बहुत
1: पानी को
0: सुंदर लग
1: पा
0: रहा है,
1: के।
0: अभी मैं मक्का खेत में स्कॉल किया मैंने।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो कभी आपके पास तो मोबाइल है, आप मोबाइल से प्रोग्राम सुनते होंगे हमारे,
0: हाँ दीदी मोबाइल पर सुनता हूँ मैं तो।
1: तो कभी इस मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं अपने खूबसूरत हरे भरे
0: करते हैं
1: खेत
0: दीदी,
1: की और उन्हें कहीं भेजते
0: जी
1: हैं अब कि देखिए ऐसी हरियाली है।
0: भेजते हैं दीदी, हमारे दोस्तों के पास कई दोस्त हैं उनके पास भेजते हैं।
1: तो आपको उनका रिस्पांस मिलता है, उत्तर आता है कि अरे वाह क्या बात है।
0: हाँ उत्तर आता है दीदी, कॉल भी बात होती है हमारे रेडियो से, दोस्त जुड़ रहे हैं जो सबसे मतलब ग्रुप जुड़ रहा है अपना।
1: अच्छा, रेडियो के जो
0: हाँ
1: श्रोता वर्ग है उनसे आपकी दोस्ती है,
0: जी जी
1: बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: दीदी आज हमें सुनना है, हमको तुमसे प्यार है, इस पिक्चर का नाम है, गाने की बोल है, तेरी इश्क में पागल हो गए दीवाना तेरा रे।
1: सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: आइए मुझे,
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का इंदौर से।
0: स्वागत है आपका। बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ भी नहीं करती हूँ मैडम, घर ही रहती हूँ, बच्चे जाते हैं काम पर।
0: तो आप घर के काम करती हैं फिर?
1: हाँ घर पे थोड़ा बहुत बटा लेती हूँ काम, बच्चे काम करने नहीं देते पे जी आप मेरे को।
0: क्या बात है, इसका मतलब बच्चों का लालन पालन आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: जी मैडम मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं मैडम, मेरे को काम नहीं करने देते, ना बाहर जान देते ना घर भी नहीं ज्यादा काम करने देते मेरे को।
0: अच्छा एक बात बताइए,

0: बाहर जान देते ना, घर भी नहीं ज्यादा काम करने देते मेरे को। जी
1: अच्छा एक बात बताइए, अभी श्रावण का महीना शुरू हो गया है, पता है ना आपको,
0: मैडम।
1: तो कभी आप कुछ गाती हैं इस महीने में? मन करता है कि घर में बैठी हूँ तो कुछ गीत गाए जाएं, कुछ लोकगीत गाए जाएं, या कोई ऐसा गीत जो श्रावण मास से जुड़ा हो?
0: मैं तो पहले गा लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा तबीयत तबीयत बीच में खराब हो गई थी, जब से गुनगुना लेती थोड़ा बहुत, जैसे गाने आते जब गुनगुना लेती हूँ बस।
1: अच्छा कोई गीत गुनगुना के बताइए हमें, अगर याद है तो।
0: अपन राग नहीं लगेगी मैडम, थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ बस। इस श्याने करम का क्या कहना, इस श्याने करम का क्या कहना।
1: अच्छा गाया आपने, अच्छा उठाया, कव्वाल की तरह गा रही थी आप, कोई कव्वाल गाता है जैसे, है ना?
0: मैडम आवाज अच्छी नहीं चल रही, नहीं तो गाने पे मैं बहुत अच्छे अच्छे गा लेती हूँ।
1: हाँ बताइए अब कौन सा गीत सुनवाए आपको, कौन
0: कच्चे धागे का सुना दीजिए।
1: सा गाना, यही गाना?
0: हाँ, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
1: चलिए सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद का।

0: तो आप और आपके परिवार के अन्य लोग खेत की रखवाली करते हैं, काम करते हैं, या आप अकेले ही?
1: नहीं मैम, हमारा पूरा परिवार खेती बाड़ी का ही व्यवसाय है हमारा, तो खेत के
0: पशुधन भी
1: अंदर तो
0: है?
1: काम करते हैं।
0: पशुधन
1: जी
0: भी
1: मैम
0: है? कितनी
1: जी जी गाय है,
0: 3 गाय हैं?
1: 3-4 गाय है मेरे पास।
0: उनकी भी
1: जी
0: देखभाल
1: जी
0: करनी
1: जी
0: पड़ती है?
1: खेती बाड़ी में चारा होता है उसमें लाते हैं गट्टा बना बना के, तो
0: अच्छा, वो खा लेती हैं।
1: जी।
0: अच्छा, आप खेत खलियान में रहते हैं तो बारिश और हरियाली के इस खास माहौल में मोर और पपीहों की आवाज भी आती है? मोर नाचते हैं आसपास, मीठी आवाजें आती हैं?
1: जी जी मैम, पक्षी भी आते हैं और साथ में जो रेडियो पे भारती को जो साथ है हमारे, बहुत अच्छा लगता है मैम। ये जो गाने आप प्रसारित करते हैं ना, जो विविध भारती से आते हैं, वो हमको मन को छू जाते हैं।
0: क्या बात है, इसीलिए तो आप लोग विविध भारती से जुड़े हुए हैं।
1: जी, काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और हमारे भाई साहब हैं, सब घर परिवार के पूरे सुनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप अपने खेत खलिहान में बैठकर विविध भारती के साथ प्रकृति का आनंद भी उठाते हैं।
1: जी मैम, और आज मुझे राजा हिंदुस्तानी का गीत सुनना चाहता हूँ मैम।
0: बताइए,
1: पूछो जरा, पूछो मुझे क्या हुआ है।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश,
1: हाँ जी नमस्कार मैम,
0: अपना नाम बताइए। नमस्कार
1: मैं बीरन धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो? खेती
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करते हैं आप?
1: बाड़ी का व्यवसाय है मैम,
0: अच्छा, क्या है इन दिनों खेत में?
1: मक्का है मैम, मक्का धान सोयाबीन।
0: और मौसम कैसा चल रहा है भाई? श्रावण मास तो शुरू हो गया है, बरसात आने लगी है।
1: बिल्कुल मौसम अच्छा है, हरियाली हरियाली है।
0: कितना बड़ा खेत है आपके पास?
1: मेरे पास 4-5 बीघा खेत है।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम जी,
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: मेरा भोपाल ओझा ग्राम ककवासा जिला गुनासा बोल रहा हूँ मैडम जी। आपसे तो पहली बार ही बात हो रही मेरी।
0: अरे इससे पहले नहीं हुई हमारी बातचीत कभी,
1: नहीं हुई मैडम जी।
0: तो चलिए आज तो हो गई।
1: जी आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ, विविध भारती से जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से जी। मान
0: अच्छा
1: लीजिए तो
0: कैसे लगते हैं
1: कार्यक्रम
0: आपको कार्यक्रम?
1: बहुत बढ़िया लगते हैं जी। मान लीजिए विविध भारती के तो हेलो परमाल सखी सहेली और तिरवेड़ी और सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी। मान लीजिए
0: अरे वाह, लगातार सुनते हैं या कभी कभी छूट भी चाहते हैं कार्यक्रम?
1: लगातार सुनते हैं हम तो विविध भारती के। मान लीजिए अभी
0: अच्छा क्या बात है, तो आप क्या करते हैं
1: क्या
0: गोपाल जी?
1: खेती करते हैं, अभी तो मक्का लगा रखी है, अभी तो क्योंकि मक्का की फसल आएगी 2 महीने बाद जी। मान लीजिए बारिश भी हो रही है अभी जी।
0: मक्का की फसल तो पानी मांगती है बहुत ज्यादा,
1: फिर
0: इसके बाद क्या लगाएंगे आप?
1: इसके बाद लगाएंगे धनिया गेहूं जी।
0: ये कब पक जाएगी फसल?
1: आ जाती है उधर गर्मी तक, आ जाती है होली तक ही।
0: अच्छा, तब तक तो आपको बड़ी देखभाल करनी पड़ेगी, आपके परिवार के लोग भी लगे रहते होंगे खेतों में, वहीं रहते हैं आप?
1: लगे रहते हैं जी। मान लीजिए
0: खेतों में ही रहते होंगे ना, वहीं पर मकान बना होगा आपका?
1: नहीं, अभी तो गांव पास में ही है अपना खेत तो जी। मान लीजिए
0: अच्छा, तो बताइए कुछ खास लग रहा है खेत खलिहान को देखकर, कैसा महसूस कर रहा है हमारा एक किसान?
1: बढ़िया लग रहा है, यही विविध भारती सुनते या चलता रहता है हमारा तो
0: हाँ ये तो बहुत बड़ा साथी है आपकी जिंदगी का।
1: जी।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: रंग फिल्म को सुनना है कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। तुम्हें देखे मेरी आंखें इसमें क्या मेरी कथा है जी वाला।
0: अरे कौन सा गाना खूबसूरत उठा के लाए हैं आप, कहाँ से ढूंढ के लाए हैं?
1: मान लीजिए आप 90 की तो सच्ची गीत पसंद करता हूँ जी। मान लीजिए हमारे दोस्तों की पसंद है ये गाना।
0: चलिए मान लिया हमने, ठीक है सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदाकिनी दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे। कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से। बिल्कुल
0: अरे बहुत पहले भी आपसे एक बार बात हो चुकी है हमारी शायद। देखिए हम अपने श्रोताओं की आवाजें भी पहचानने लग गए हैं।
1: आपका कार्यक्रम दीदी सुनते रहते हैं हम तो, बहुत अच्छी आवाज लगती है और आपको जो नॉलेज है जनरल नॉलेज वो भी आपका बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट है।
0: ये आप कह रहे हो आपका बड़प्पन है, आपका स्नेह है।
1: जी दीदी
0: तो बताइए आपके भोपाल में जहाँ आप रहते हैं मौसम का क्या हाल है, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है तो ये खास मौसम जो हमारे जीवन में अभी आया है आपके वहाँ क्या हाल है और आपके जीवन में इसका क्या असर है ये बताइए हमें।
1: दीदी श्रावण मास का बहुत ही अच्छा असर है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है दीदी, बहुत
0: अच्छा।
1: अच्छा मौसम है और श्रद्धालु भी जो शिव मंदिर हैं वहाँ पर बहुत श्रद्धालु जुड़ रहे हैं और कांवड़ यात्रा भी जा रही हैं कहीं कहीं पर, बहुत अच्छा लगता दीदी, पूरे महीने बहुत ही अच्छा आनंदमय हो जाता है। सबसे बड़ी ये बहुत अच्छी बात है दीदी की जो कांवड़ यात्रा जाती है तो जो उन यात्रियों का जो रास्ता रहता है उसको सुगम बनाते हैं श्रद्धालु अपनी
0: जी
1: तन मन धन से, उनको जगह जगह पंडाल लगाते हैं, उनको भोजन फलाहार की व्यवस्था रखते हैं, जल
0: बिल्कुल
1: पानी जो भी चाहिए हो
0: बिल्कुल
1: तो वो उनके मतलब यात्रा को सुगम बनाते हैं, उनके लिए मैं सब दीदी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
0: बिल्कुल। बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप क्या करते हैं, फिर आपकी पसंद का गीत सुनते
1: दीदी
0: हैं।
1: मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर जी,
0: अरे कौन सी
1: और प्लस
0: पेंटिंग?
1: मैं ये वॉल पेंटिंग दीवार लेखन जिसे बोलते हैं जी।
0: अच्छा, तो कभी श्रावण मास की कल्पना की, कुछ महीने का कैनवास पे उतारा उस महीने को कभी?
1: महीने को तो नहीं लेकिन दीदी इससे तो वास्ता पड़ता ही रहता है।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक कलाकार हैं और अच्छी अच्छी कल्पनाओं के जरिए जो अपनी पेंटिंग बनाते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज दीदी मूवी का नाम है प्यार का मौसम और गाना है निसुल्ताना रे, उसमें एक अंतरा बहुत अच्छा है दीदी, बलम बबुआ बेदर्दी सावन।
0: सावन आया आजा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, ये मेरी भी पसंद का गीत है, सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: आपके सब कार्यक्रम अच्छे होते, हम
0: अरे नाम
1: दिल
0: बताइए,
1: से सुनते।
0: नाम तो बताइए अपना पहले। कहाँ
1: नाम मेरा मच्छिंद्र हरदास चांडवले, हम
0: से बोल रहे हैं आप?
1: अहिल्या नगर से बोल रहे, शिरडी के बाजू में से।
0: स्वागत है।
1: आप सब ठीक है?
0: हाँ बिल्कुल ठीक है, और आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। हमारे ऐसे श्रोता हमें
1: वो
0: कहाँ
1: अभी तो
0: मिलेंगे।
1: कैसा है, भगवान की कृपा है तो
0: अरे वाह,
1: लग
0: अच्छा
1: गया हमारा फोन।
0: बताइए कैसा मौसम है वहाँ पर? झमाझम
1: अभी
0: बारिश
1: फिलहाल
0: हुई?
1: तो बारिश कल परसों हो गए था। अच्छा,
0: हाँ क्योंकि श्रावण मास लग चुका है, सावन का महीना
1: श्रावण मास
0: है।
1: चालू है, कल परसों बारिश हो गए था, अभी आज बारिश नहीं है।
0: मतलब मानसून सक्रिय हुआ कि नहीं?
1: मानसून कैसा है, अहिल्या नगर में बारिश है ना, बम्बई में नारियली पूर्णिमा होती है क्या?
0: हाँ,
1: हाँ, उसके बाद जो नारियल बम्बई में गिरता है उसके बाद अहिल्या नगर में बारिश आता है, उसको
0: अच्छा
1: पर्ची का बारिश बोलते।
0: अच्छा
1: इधर अहिल्या नगर में सह्याद्री के पट्टे नहीं है।
0: अरे बहुत टेक्निकल बात कर दी आपने तो।
1: अभी क्या करते, अभी वो कैसा है, सिरूर सितरापुर तक सह्याद्री के पट्टे आते हैं, तो वो जहाँ मानसून गिरता है, भीमा शंकर, पूना, बम्बई, कोकण, वो भाग में बारिश ज्यादा होता है।
0: समझ गई मैं,
1: इधर बोले तो ये माथे पे। हो
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत
1: हो
0: अच्छे तरीके से बात समझाई हमको कि किस तरह का
1: कैसा
0: मौसम।
1: रहता है, अभी ये पहले से जो भगवान ने लगाया ला है
0: हाँ
1: रीत रिवाज, वो
0: हाँ
1: चलते आने वाला है, रीत रिवाज से चलता है,
0: जी,
1: और उसकी मर्जी बिगर कुछ होता नहीं।
0: क्या बात कही
1: मराठी
0: आपने।
1: में एक आभंग है, अरे अरे मानस सातू वेढा का खोळा रे, सेवा पुढे मानूस पाला पातोळा रे, घडी घडी नाही कुणाचा भरोसा, तुला कोण देईन मनाचा दिलासा।
0: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल घड़ी भर का भरोसा नहीं है। तो आपने जिंदगी के अनुभव ले लिए हैं और अब जिंदगी को आप
1: कैसा है,
0: उसी
1: मैं
0: तरह से।
1: तुमको बोलूँ क्या, सिलोन वाल का रेडू था, उसके पास भी धरती पे आपके जय माला करके कार्यक्रम आते थे।
0: जी
1: अभी तो हेलो गीत बाहर एक ही दिन रहता है, हमारा सवा छे को भजन संध्या कार्यक्रम लगता है, भक्ति संगीत,
0: जी
1: हवा महल, हम सब कार्यक्रम आपके सुनते हैं,
0: बहुत सुंदर
1: और हमारा दिनचर्या भी अच्छा जाता है। तो
0: जी, बिल्कुल। तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का गीत, हमें कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मेरा पसंदीदा गाना है शिरडी के साईं बाबा का,
0: अरे वाह, कौन सा?
1: आया हूँ तेरे दर पे सवाली शिरडी वाले साईं बाबा।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी
1: तो
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिंगरी कुरासा कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम, और ड्यूटी पीरियड में ही मैं आपके कार्यक्रम में कई दिन से फोन कर रहा था, लग नहीं रहा था, लग गया आज। बहुत खुशी हुआ मैडम, बातचीत हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: क्या ड्यूटी परेड, क्या कह रहे हैं आप?
1: मैं SECL में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, और
0: जी
1: ड्यूटी पीरियड में कई केंद्रों में फोनिंग में, लाइफ में, ईमेल में, और सब में जुड़ता हूँ, प्रसारण भी सुनता हूँ। और आपका कार्यक्रम में आज फोन किया मैडम, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बातचीत हो रहा है। और आज मैं अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग, और गीत के बोल है मस्तों का झूल, और गायक है दिव्या कुमार।
0: चलिए, ये गीत तो हम आपको सुनवा देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तो एक आध बात तो कर लीजिए हमसे। हाँ,
1: हाँ आराम से मैडम बोलिए।
0: आप बताइए क्या करते हैं, मतलब कैसा आपका वक्त निकलता है, मौसम में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, आपके शहर में बारिश हुई कि नहीं हुई, क्योंकि सावन का
1: जी
0: महीना
1: बता रहा
0: शुरू
1: हूँ
0: हो
1: मैडम
0: गया है और हम तो ऐसा मानते हैं कि जब सावन आता है तो हरियाली छा जाती है।
1: जी, यहाँ पर मौसम एकदम मैडम अभी बादल किया हुआ है, उमस टाइप की गर्मी है, और मतलब कि हल्का मतलब लाइटिंग बादल है, वो किया है, सूर्य की रोशनी है, ये बादल किया है, लेकिन ये पानी गिरने के कगार में, क्योंकि जब उमस गर्मी होता है मैडम तो पानी गिरता है, लेकिन कोई कहा नहीं जा सकता है कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन भगवान की मर्जी है तो वो उस अनुसार ही पानी गिरता है।
0: बिल्कुल, चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228607288, दूसरा नंबर 02240024662। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, तकनीकी सहयोग समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: प्रोग्राम किसान वाणी लैके हाजिर हाँ मैं कुलविंदर चानी। किसान वीरो ते भैणों, अज तुहानू सुनवावांगे एक अगां वधू किसान लापरी सिंह पिंड मलवाला जिला बठिंडा दे वसनीक नाल एक खास मुलाकात। ते अज दा साडा प्रोग्राम दा विशा रहेगा फुल गोभी दी काश्त। ते प्रोग्राम दे अखीर विच तुहाडे नाल कुछ खेतीबाड़ी नाल संबंधित जानकारियां सांझियां करांगे ते जांदे जांदे दस्सांगे तुहानू मौसम दा हाल। ते आओ उस तो पहलां सुणदे हां एक खास गल्लबात।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
4: हुणे तुसी सुनिया प्रोग्राम किसान वाणी। प्रोग्राम दे संचालक सन कुलविंदर चानी ते ओ गलबात कर रहे सन फुल गोभी दे काश्तकार लवप्रीत सिंह नाल। तुसी ट्यून कीता है आकाशवाणी FM।

0: एक जमाने विच हुकम सिंह नू उस दे घर वाले कुड़कुड़दास बुलाउंदे सन क्योंकि लाइट पखे चलदे देखदे ही उस सारयां ते चिकन लगदे सन।
1: ओ रामू ए पखा क्यों चलदा छड़ता, बिजली दा बिल की तेरा बापू भरेगा।
0: पर अज सारे उन्हां नू प्यारा सिंह कहंदे ने क्योंकि जदों तों उन्होंने सोलर पैनल लगाया है उदों तों मीटर दी सुई भी शांति नाल सौंदी है। अते हुकम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अज 23,731 करोड़ रुपए के कुल खर्च नाल जैविक ऊर्जा योजना गोबर दर नूं मंजूरी दे दित्ती है। पंजाब दे सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस दा कहना है कि राज दी सिख्या प्रणाली विच इतिहासक तब्दीली आई है। सरकारी स्कूलों विच 2,638 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे ते काम किए गए ने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमिशन ने बरनाला नगर कौंसल के सफाई कर्मचारियों के शांतमई धरने प्रदर्शन दौरान पुलिस वालों किए गए लाठीचार्ज की घटना की निखेधी की है। आजादी दिहाड़े नूं ध्यान च रखदिआं पंजाब पुलिस वल्लों सूबे भर विच सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध किए जा रहे ने।

0: मैं उपासना कौशिक लेके हाजिर हाँ प्रोग्राम युव वाणी। प्रोग्राम पेशकर्ता ने अमनदीप कौर अते रमनीत कौर।
1: नमस्कार श्रोतियो, प्रोग्राम युवानी विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ तुहाडी दोस्त अमन रूपाल
2: ते मैं रमनीत मान। उम्मीद है तुसी सारे तंदुरुस्त खुश अते नवे जोश नाल अपने दिन दी समाप्ति कर रहे होवोंगे।
1: दोस्तों, नौजवानी ओ ताकत है जो सुपनिया नू हकीकत विच बदल सकती है। सही सोच, चंगे

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: जी श्रोतियों, प्रोग्राम शाम सुहानी लैके हाजिर हाँ मैं रमा शर्मा। अज इस प्रोग्राम तहत तुसी सुनोगे पिंगलवाड़ा संस्थापक भगत पूरन सिंह जी की बरसी ते आकाशवाणी FM बठिंडा की विशेष पेशकश। प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक जनाब बलजीत शर्मा अते संपादन है सतपाल बराड़ जी का।
2: हमेशा मेरे अंग संग, मेरी ओट, मेरा आसरा, मेरा विश्वास।
3: आकाशवाणी दे अदबी सूझवान साहित्यक बुद्धिजीवी दोस्तों, आप जी दा दोस्त बलजीत शर्मा अपने साथी सतपाल बराड़ जी

0: संगठन वालों मानता प्राप्त है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी किया कि मुसाफिर सुरक्षा सरकार की सब तो वड्डी तरजीह है अते हवाबाजी सुरक्षा बारे गलत जानकारी फैलाउन नाल मुसाफिर विच बेलोड़ी चिंता पैदा होंदी है। देश विच बिजली खेतर लिए कोले की सप्लाई काफी है जो कि जुलाई विच उत्पादन डिस्पैच ते प्राप्तियां विच तेजी नाल वाधे कारण है। कोला मंत्रालय मुताबिक जुलाई 2026 विच कुल कोला उत्पादन 6 करोड़ 90 लाख टन तो वध हो गया जो कि पिछले साल इसे समय विच 6 करोड़ 40 लाख टन तो वध सी। अगस्त विच कुल कोला डिस्पैच होर भी वध सी जो पिछले साल इसे समय विच 7 करोड़ 30 लाख टन तो वध दे मुकाबले 8 करोड़ 60 लाख टन तो वध पहुंच गया जो कि 18% तो वध दी मजबूत वाधा दर्शाता है। जापान विच भारतीय राजदूत नगमा मलिक ने आज हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क विखे परमाणु बम डेगे जाने की 81वीं वरेगंढ के मौके ते परमाणु बम धमाके के पीड़ता नु श्रद्धांजलि भेंट की थी। उन्होंने हिरोशिमा के मेयर काजुमी मात्सुई ते गवर्नर मीका योकोटा नाल मुलाकात की थी। 6 अगस्त 1945 नु दूजी आलमी जंग के आखिरी पड़ाव विच अमरीकी जंगी जहाज एनोला गेट सवार एक यूरेनियम बम हिरोशिमा ते सुट्टा गया सी जिस विच अंदाजन 1,40,000 लोग मारे गए सन। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त तो 13 सितंबर तक चीन विच होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 लई औरतों की 18 मैंबरी जूनियर टीम का ऐलान कर दिता है। टीम विच 18 खिडारी ते 2 विकल्पिक खिडारी शामिल ने इसकी अगुवाई मिडफील्डर खदेम शिलेमा चानू वालों की जाएगी। आखिर च खास खबरां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा विच एक अहम कदम वजो गोबरधन योजना नु प्रवानगी दे दित्ती है। संसद वल्लों अज खर्चे लई रकमां कटाउण बारे नंबर 3 बिल 2026 नु मंजूरी मिल गई है। लोकसभा ने टैक्सेशन ते होर कानून सोध बिल 2026 पास कर दिता है। बंबे हाई कोर्ट ने 2013 दे जिनसी शोषण मामले विच तहलका दे साबका संपादक तरुण तेजपाल नु दोषी ठहराया है। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारण करके एक दिन लिए मुअत्तल रहने बाद मुड़ शुरू हो गई है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 बजे होएगा। नमस्कार।
1: जी श्रोतियो स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम शाम सुहानी विच। प्रदेशिक खबरां दे इस बुलेटिन तो बाद आओ सुनदे हां पिंगलवाड़ा संस्थापक भगत पूरन सिंह जी दी बरसी ते आकाशवाणी FM बठिंडा की विशेष पेशकश का भाग दूजा।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਮਿਤੀ 7 ਅਗਸਤ, ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ 12:10 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸੋ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। इस प्रोग्राम तहत तुहाडी मुलाकात करवाई जावेगी बठिंडा शहर दे मेयर श्री पदमजीत मेहता जी नाल। जेकर किसी भी स्रोते ने अपने इलाके नाल संबंधित कोई मुश्किल या समस्या मेयर साहब नाल सांझी करनी होवे ता ओ प्रोग्राम दे प्रसारण दौरान स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर समा नोट कर लवो, मिति 7 अगस्त, दिन शुक्रवार, दोपहर 12:10 ते सुनना ना भूलना विशेष सिलसिला मुश्किल दसो हल दसांगे, सिर्फ आकाशवाणी बठिंडा ते।
1: इस दे नाल ही मैनू रमा शर्मा नू दियो इजाजत प्रोग्राम शाम सुहानी नू समाप्त करन दी। नमस्कार। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ ਹੈ 7:59:50 ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ NCERT ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਮੰਗ।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओ, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओ, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओ, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ,

लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे 2 मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह जी उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं जी। और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम, असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक

0: एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
3: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
4: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
5: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
6: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
5: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
7: बिल्कुल सही कहा आपने।
6: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
7: जी जी चलो चलो देखते हैं।
6: हाँ, चलो चलो चलो आओ, आओ। चलो चलो जल्दी चलो।
8: अहोम के महाराज की जय हो।
9: जय हो, जय हो।
8: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बिशु के साथ।
10: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: Akkord. Að því sundar. Hamme snutti prestuti ke sakshi hokar dhanne hui. Mahamantri.
1: Ji, agya maharaj.
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की।

0: साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
1: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
2: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
0: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
2: अच्छा।
0: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
2: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
0: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
2: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
0: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
2: ओह।
0: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
2: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
0: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
2: ओह।
0: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
2: अच्छा।
0: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
2: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
1: जी।
2: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
0: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
2: जी।
0: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
2: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी। खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

0: वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।
1: वाओ, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल हैं, और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक है।

0: रही हो तुम। पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया इसे।
0: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई?
1: अरे भैया
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे जीते रहो, शाबाश।
2: बेटा मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी एक मिनट, आ गया मेरा डब्बा, ये रहा। देखो बेटा ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है, आई पसंद। और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो, ये तो भूल ही गया था, इतनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। नो शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे, पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर, पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मगर मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा ओ, चली गई बिना खिलौने लिए।
3: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
3: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
3: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
4: नहीं ताशु आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
3: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
4: नहीं ताशु मेरा खेलने का मन नहीं है।
3: खेल लो प्लीज।
4: प्लीज ताशु मुझे नहीं खेलना है।
3: प्लीज
4: नहीं।
3: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
4: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
6: वाह चिड़िया कितनी अच्छी है, तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं, फूल फूल फिर से, वाह तोते, तितलियां रंग बिरंगी लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी
1: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
6: मैं तो बाहर जा रही हूँ। अरे वहाँ देखो चिड़िया तोते कितने सुंदर हैं।
1: अरे सुन तो।

0: नहीं, मैं तो जा रही हूँ।
1: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
2: एक बार देखे तुमने?
1: हाँ।
2: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
1: सही कहते हो आप।
2: हे ईश्वर।

0: कहते हो आप?
1: हे ईश्वर, हे भगवान, तूने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
2: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
3: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: हुणे तुसी सुन रहे सी NCERT वल्लों प्रायोजित प्रोग्राम उमंग। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो की घड़ी मुताबिक समा है 8:29:40। आओ हुण सुनदे हां पंज पाणियां दे गीत दे तहत स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस दा भाग पंजवां।
6: अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस बाय डॉक्टर आभा चौधरी, फाउंडर सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन अनुग्रह।
7: पंच पाणियां दे गीत।
6: You a talk on senior citizens, care, system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
8: Senior citizens care ka, chahe wo gaon mein ho, chahe wo shahron mein ho, uske prati jagrukta karni ho ya पॉलिसी मेकर्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटी या वाइडर सोसाइटी को इसमें इंटीग्रेट करना हो। एक ब्रॉड पिक्चर कि भारत धीरे से ही सही पर एजिंग सुनामी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बेहतर मेडिकल सुविधाएं और जो लॉन्जिविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है। यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए कि ये बोन बनकर आ सकता है। हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है, उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं। 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय ये है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं। 58% से ज़्यादा महिलाएँ 60 साल के ऊपर हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके प्रति ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है। ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग होते हैं। वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना, और क्योंकि शरीर क्षीण है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं तो घर से ज़्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियाँ भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं। कुछ साल पहले अखबारों ने ये भी पढ़ा था जो बेगरी करते हैं काफ़ी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएँ वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन

या फाइनेंशियल अब्यूज ज्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है। उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनसे चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाजों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओ इस चीज को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं। अब ये प्रश्न आता है जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज करते कौन हैं, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं, सन्स और डॉटर्स, वही इसको और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए। तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज के, तो उसके कुछ कारण हैं। आपने सभी ने ये शब्द जरूर सुना होगा, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं, और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुध-बुध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज के प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है, उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं, एक वो प्रकार का अब्यूज है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है, और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीजें जो स्टॉप कर देते हैं, वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाजें सुनाई देती हैं, उनकी देखभाल करता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति उनका हाइजीन, उनकी डेली जरूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है, उस पे इसके बहुत ज्यादा केसेस आते हैं जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हो, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हो,
तो वो एक बार अपने नाम कर ले।

0: हैं तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो समय पे अपनी वसीयत बनाएं और अपने नाम पे सेविंग्स रखें और चीजों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज वेलफेयर Awareness and Strengthening Access to Justice from the webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: We continue with the talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice.
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं? तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है. मैं तीन लेवल्स आपके सामने जरूर बात करना चाहूंगी. एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स स्वयं की जिम्मेदारी लेना समय पे. जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना. सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना. ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व हैं. दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना. जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियां उन्हें देना. और जो ग्रास रूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशन हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है. आने वाले समय में डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो. एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति. और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग. और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं. जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं, उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं. और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं. वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाते हैं. हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ. और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामयी वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है. सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन. और इसमें एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स. मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं, उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, CCTV या जितने वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है. जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, मास अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है. कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए. इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं. और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे. और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं. स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन्स, जैसे मैंने कहा. इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं. एल्डर्स मंथ होता है.

0: अक्टूबर में पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स विमेन के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में। एक और वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली ने हमारी संस्था अनुग्रह, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली हाई कोर्ट के साथ मिलके भारत का एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं, स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है, जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडिया फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज an age friendly India and age friendly society, and especially I would say youth has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this.
1: You have been listening to a talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, founder, secretary and chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: ਇਸ ਸਪੌਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
3: ਕਾਲ ਕਰੇ ਕਹੀਂ ਸੇ ਵੀ ਕਭੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਅਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਦਦ ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੈ। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता।
5: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबर ऋण योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कल राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अपनी 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन इंजन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्विता चालिया और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से।
4: मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए 31 करोड़
5: जैव मंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
4: बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करना है।
6: के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
5: आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135

0: किलोमीटर से अधिक लंबे चार लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
1: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, आसाम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये फोर लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
3: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
4: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
5: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
6: 19 लाख हाउस

0: होल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
1: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
0: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
2: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
3: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
2: 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
5: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में 1 डॉलर की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए

0: 22 पैसे पर बंद हुआ।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को पीओजेके में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves Govardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to 4-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test fires medium-range Agni-4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Kerala. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved Govardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
3: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
4: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 crore rupees टू the national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
3: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
2: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam.
3: आज का दूसरा बड़ा फैसला है असम में।
4: टुडेज सेकंड मेजर डिसीजन इज रिलेटेड टू एन इम्पोर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट इन असम। इट इज द बायहाता चरियाली तेजपुर 4-lane हाईवे स्ट्रेचिंग फ्रॉम बायहाता चरियाली लोकेटेड जस्ट आउटसाइड गुवाहाटी टू तेजपुर। द हाईवे विल बी 135 किलोमीटर्स लॉन्ग विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8,970 करोड़ रुपीज।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मेरे हमदम मेरे दोस्त। और आइए अब सुनते हैं फिल्म प्यार ही प्यार का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी है और संगीत शंकर जयकिशन का है।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था प्यार ही प्यार। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है खिलौना। शब्द आनंद बख्शी के हैं और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म खिलौना के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे संगीतकार को जो अपने कॉलेज के जमाने में अच्छे क्रिकेटर रहे थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जाने की बजाय वो आ गए फिल्मी दुनिया के मैदान में और बन गए संगीतकार और निर्देशक। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने संगीतकार, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर विशाल भारद्वाज पर।

चाल भारद्वाज कुछ गुमनाम गजल गायकों के लिए हारमोनियम बजाया करते थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स में उन्होंने अपने प्रोग्राम किए। आगे चलकर आरवी पंडित से उनकी जान पहचान हुई और इस तरह से विशाल भारद्वाज एक म्यूजिक कंपनी में आ गए। एक दोस्त ने विशाल भारद्वाज का परिचय जाने माने गीतकार और निर्देशक गुलजार से करवाया।

0: है जी।
1: विशाल भारद्वाज का जन्म हुआ था बिजनौर, उत्तर प्रदेश में। उनके पिता राम भारद्वाज एक जाने माने कवि और गीतकार थे। विशाल की शिक्षा दीक्षा हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। अपनी जवानी के दिनों में

उसके बाद विशाल ने जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड और गुच्छे जैसे कई सीरियल्स में गुलजार के लिखे गानों को स्वरबद्ध किया। जंगल बुक का टाइटल गीत तो आपको याद ही होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद जब गुलजार बना रहे थे फिल्म माचिस, तो बतौर संगीतकार उन्होंने विशाल भारद्वाज को साइन किया। फिल्म माचिस का संगीत एकदम अलग तरह का था, ये एक ताजगी भरा संगीत था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे ये गाना।

इन सभी गानों को सुनकर लगता नहीं है कि किसी नवोदित संगीतकार की रचनाएं हैं ये। और फिर गुलजार के गानों को स्वरबद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। ये बात तो जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन पहले ही कह चुके थे। जाहिर है कि विशाल भारद्वाज ने कई चुनौतियों के बीच काम करके अपने आप को साबित किया। विशाल भारद्वाज की दूसरी बड़ी फिल्म थी सत्या।

सत्या के बाद विशाल भारद्वाज ने कमल हासन की फिल्म चाची 420 में भी संगीत दिया और कई अलग अलग फिल्में उनकी आईं। लेकिन जिस फिल्म का संगीत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और सुना गया वो थी एक बार फिर गुलजार की फिल्म हू तू तू। इस फिल्म का छई छप छई गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था।

इसके बाद विशाल भारद्वाज ने सोचा कि वो संगीत की दुनिया से फिल्म निर्माण की दुनिया में आ जाएंगे और फिर उन्होंने साल 2002 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मकड़ी। शबन आजमी के अभिनय वाली इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण और इसके अलावा संगीत, ये सारी जिम्मेदारियां खुद विशाल भारद्वाज ने संभाली थी। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया में बाकायदा चले आए और उनकी निर्देशित पहली बड़ी फिल्म कहलाई मकबूल। मकबूल के बाद विशाल भारद्वाज ने एक और फिल्म का निर्माण किया। ये बच्चों की फिल्म थी और रस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित थी। ये फिल्म थी द ब्लू अम्ब्रेला। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने एक धमाकेदार फिल्म बनाई। ये फिल्म थी ओंकारा।

0: इस दौरान विशाल भारद्वाज का संगीत देने का काम लगातार जारी रहा और उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में आईं, जैसे लव के लिए कुछ भी करेगा।
1: वो होता है वो जो बस हो जाता है, होता

विशाल भारद्वाज के बारे में आगे बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में पढ़ाई के दिनों में विशाल भारद्वाज की मित्र बनी रेखा, जो अब उनकी पत्नी और फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी गायिका हैं। रेखा भारद्वाज की आवाज में सुनिए ओमकारा फिल्म का।

विशाल भारद्वाज की फिल्में बड़ी अनूठी हुआ करती हैं। वो फिल्मी दुनिया के सामान्य चलन से अलग हटकर अपनी फिल्में पेश करते हैं। जैसे फिल्म कमीने एक अलग तरह की कहानी थी और इसका संगीत भी अपने आप में बिल्कुल अलग था।

हम आपको बताएं कि विशाल एक अच्छे गायक भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विशाल कितनी बहुमुखी प्रतिभाएं, एक तरफ संगीत देते हैं, दूसरी तरफ कथा पटकथा संवाद लिखते हैं, निर्माण निर्देशन भी करते हैं और गायक भी हैं। जी हाँ, फिल्म यू मी और हम का ये गाना सुनिए।

अमिताभ बच्चन की अभिनय वाली फिल्म निशब्द की कहानी विशाल भारद्वाज ने तैयार किए थे। फिल्म हाले दिल का ये शीर्षक गीत सुनिए, कमाल का गाना है ये और विशाल भारद्वाज की प्रतिभा को अच्छी तरह से दर्शाता है।

अब विशाल भारद्वाज निर्माता भी बन चुके हैं और अपनी कंपनी के जरिए नई प्रतिभाओं को उतार रहे हैं। जैसे कि विशाल भारद्वाज ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म बनाई है इश्किया। फिल्म इश्किया के गाने भी गुलजार ने ही लिखे हैं और इनका संगीत खुद विशाल ने तैयार किया। जरा इब्ने बतूता सुनिए।

विशाल भारद्वाज अपने खास तरह के सिनेमा के लिए और अपने खास तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं। साल 2011 में वो लेकर आए फिल्म सात खून मां।

2013 की शुरुआत विशाल भारद्वाज ने की अपनी एक दिलचस्प फिल्म के जरिए, जिसका नाम था मटरू की बिजली का मंडोला। इस फिल्म का ये दिलचस्प गाना सुनिए, विशाल भारद्वाज की जीवन संगिनी रेखा भारद्वाज ने।

विशाल भारद्वाज लेकर आए एक बड़ी ही चर्चित फिल्म जिसका नाम है एक थी डायन। विशाल भारद्वाज अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी

हिंदी फिल्म उद्योग के संवेदनशील निर्देशकों में होती है। साल 2014 में विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर की कृति हेमलेट पर बनाई अपनी फिल्म हैदर 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।

विशाल भारद्वाज की एक और फिल्म आई डेढ़ इश्किया, जो इश्किया का सीक्वल है। आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्मों के निर्देशक अभिषेक चौबे, निर्माता विशाल भारद्वाज, संगीत भी विशाल का ही।

विशाल भारद्वाज एक संगीतकार होने के साथ साथ एक निर्माता, निर्देशक और लेखक भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने फिल्म तलवार का निर्माण भी किया और इसकी कहानी भी तैयार की। आपको बता दें, फिल्म तलवार का निर्देशन जाने माने शायर, निर्माता, निर्देशक और लेखक गुलजार की बेटी मेघना गुलजार ने किया था और फिल्म तलवार ने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार हासिल किए थे। पिछले दिनों आई निशिकांत कामत की फिल्म दृश्यम में विशाल भारद्वाज ने संगीत दिया था। इसके अलावा फिल्म जुगनी में विशाल भारद्वाज ने ये गीत गाया था।

0: विशाल भारद्वाज बहुत ज्यादा फिल्मों में संगीत नहीं देते। आजकल वो उन फिल्मों का संगीत निर्देशन कर रहे हैं जिन्हें या तो उन्होंने प्रोड्यूस किया है या फिर उनका निर्देशन उन्होंने किया है। लेकिन पिछले दिनों एक फिल्म में उन्होंने कुछ गाने बनाए। ये फिल्म थी मदारी, विशाल भारद्वाज प्रोडक्शंस की एक महत्वपूर्ण फिल्म पिछले दिनों आई और वो फिल्म थी रंगून।
1: टपके टपके रे

0: संगीतकार विशाल भारद्वाज पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। सुन ले ए महबूब, मेरी दुनिया को तेरे साथ की जरूरत है, मेरी आंखों को तेरी एक नजर का इंतजार, और मेरे दिल को विश्वास है तेरे सहारे का। जब तन्हाइयां मेरा दामन थाम लेंगी तो तेरी यादें मेरे साथ चलती रहेंगी, जब जिंदगी की राहें मुश्किल हो जाएंगी तो तेरी मोहब्बत मेरा हौसला बन जाएगी। मुझे दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, बस तेरे दिल में एक छोटी सी जगह मिल जाए, यही मेरा ख्वाब है।

इस दिल का क्या करूं जो हर पल तुम्हारा ही नाम लेता है। बहुत दिनों से अपने जज्बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब खामोशी मेरा साथ नहीं देती। पहली बार प्रेम पत्र लिखा है मैंने। अगर मेरी बातें तुम्हें नागवार गुजरे तो इसे नादान दिल की भूल समझकर माफ कर देना। बस इतनी सी इल्तिजा है तुझसे कि तू बस नाराज ना होना।

जिस राह पर तुम बढ़ोगे उस राह की हर आहट में मुझे ही पाओगे। हमारी जिंदगियां अब दो नहीं रही, एक ही धड़कन की दो सदाएं बन चुकी है। तुम्हारे दिल की हर अनकही बात मेरी नजरें कब की पढ़ चुकी हैं। अब लफ्जों की जरूरत नहीं, खामोशियां ही जुबा बन गई है। अब लफ्जों की जरूरत नहीं, खामोशियां ही जुबा बन गई है। तेरी मोहब्बत ही अब मेरी

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। आज न जाने क्यों ये खामोश रात भी मुझसे कुछ कह रही है, हवा की हर सरगोशी में जैसे तुम्हारा ही नाम सुनाई देता है, दिल की धड़कनें भी कोई अनजान सा नगमा गुनगुना रही है जिसे सिर्फ मेरा दिल ही समझ पा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत ने बिना दस्तक दिए मेरे दिल में अपना आशियाना बना लिया हो। अब हर खामोशी में एक मीठी सी आहट है, हर तन्हाई में तुम्हारा एहसास, शायद इसी अनकहे एहसास का नाम मोहब्बत है।

आज न जाने क्यों ये होठ यूं ही गुनगुनाए जा रहे हैं। दिल में जो राज बरसों छिपा कर रखा था, लगता है अब आंखें उसे ही बयां कर देंगी। डर ये है कि कहीं मेरी मुस्कान सबको मेरी मोहब्बत का पता ना बता दे। अजीब सी बात है, इस एहसास में मिठास भी है और एक मीठी सी चुभन भी। लगता है इस दिल ने प्यार का ऐसा जाम पिया है जिसमें शहद भी घुला है और जहर भी। अब खुदा ही जाने ये राज मेरे दिल में रहेगा या मेरी धड़कनों की जुबां बनकर सबके सामने आ जाएगा।

जब भी बदरा घिर आते हैं, दिल में एक गड़गड़ाहट सी होती है। बिजली की हर चमक मेरे दिल को और बेचैन कर जाती है। ऐसे मौसम में दिल कहता है, काश साजन की बाहों का सहारा मिल जाए। फिर ना बरसात की बूंदों का डर, न गरजते बादलों का, उसे एक पल में सारी दुनिया सिमट जाए। बस धड़कनों की सरगम हो, बारिश की रुझुन हो और साजन का साथ। शायद मोहब्बत का सबसे हसीन मौसम वही होता है जब बरसात बाहर भी बरस रही हो और दिल के अंदर भी।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।